हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.3 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय प्रातः की 5:58 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातकालीन सभा आरंभ होती है।

श्रोताओं, हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.3 MHz पर कुछ लम्हों बाद सुबह की 6 बजा चाहते हैं। अब हिंदी समाचारों के लिए आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम वंदन वार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल

घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार, आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यं नैव चिंतयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अर्थात बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बुद्धिमान

आज के वंदनवार कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये देश गान।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 211 है। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला सीनी संगीत में तबले का दौर भाग सुनेगा आज छठा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम

रहे हैं सुबह 8:15 से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनेगा सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। सुबह 10 आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत सुनेगा लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से मैटनी शो, दिन में 12 बजे हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर और दोपहर 2 बजे त्रिवेणी। सदाबहार नगमे, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से।

दोपहर 3 बजे से आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। नाट्य तरंग सुनेगा दोपहर 3:30 से। नाटक पोस्टमैन का पहला भाग के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद P.S. कृष्णस्वामी, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे पिटारा के अंदर बॉम्बे टॉकिंग सुनेगा। इसके अंदर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग सुनवाएंगे आपको। छायागीत का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से। झरोखा शाम 6:30 से। 6:35 से संध्या रंजन विशेष जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से। इसे प्रस्तुत करने समाज सेवी का साहित्यकार सुधा मूर्ति, प्रस्तुतकर्ता तेजस्वी कामले, इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा जिज्ञासा।

मोहन सूर्यकांत का निर्देशन मुमताज शकीब। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से। छायागीत सुनेगा रात 10 बजे से। आलेख है अनुसर जयप्रकाश मीणा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी और ढलती जाए रात 10:30 से।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती से कार्यक्रम वंदन वार सुन रहे थे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेशे खिदमत है कार्यक्रम रूपरेखा। आपकी खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा।

श्रोताओं, पहले हल्की नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 6:55 पर संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7 बजे हिंदी समाचार और आज प्रातः 7:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। लोक रंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से आज प्रातः 7:10 पर और सुबह 7:40 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम सुप्रभात का।

श्रोताओं, आज प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। प्रातः 8:15 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। प्रातः 8:30 पर विविध भारती से सुनेंगे आप सदाबहार सुरीले कार्यक्रम। और श्रोताओं, आज प्रातः 9:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती से।

आज प्रातः 10 बजे नमस्ते हिसार कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से। 11 बजे कार्यक्रम गाता रहे मेरा दिल, ये विविध भारती से होगा। दिन में 12 बजे पल पल दिल के पास, ये कार्यक्रम भी आप विविध भारती से सुनेंगे। और दिन में 1:10 पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का आनंद भी आप विविध भारती से ले सकते हैं। दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, गीत गुंजन कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर विविध भारती से आप सुनेंगे और 3 बजे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सखी सहेली। श्रोताओं, आज शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे लेकर हम हाजिर होंगे हमारे केंद्र से। आज शाम 6:20 पर प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुनेगा भक्ति संगीत। 6:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा उमंग। 7 बजे कार्यक्रम होगा किसान वाणी और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे गांव। रात्रि 8 बजे शहर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम होगा परिक्रमा और रात्रि 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे आप हेलो हिसार कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनेंगे। रात्रि 11:10 पर एक विशेष कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आइए श्रोताओं, अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। सुबह 6 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदन वार आप सुनेंगे विविध भारती से। आपकी खिदमत में पेशे खिदमत होगी कार्यक्रम रूपरेखा कल प्रातः 6:45 पर। 7:10 पर लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से और 7:40 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा सुप्रभात।

श्रोताओं, कल सुबह 8 बजे समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। कल प्रातः 8:30 पर विविध भारती से आप सुनेंगे सदाबहार सुरीले कार्यक्रम। कल प्रातः 9 बजे भारत की गूंज कार्यक्रम आप सुन सकते हैं विविध भारती से। और आज के फनकार कार्यक्रम आपके लिए पेश होगा 9:30 पर विविध भारती से।

श्रोताओं, कल 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से, और 12 बजे पल पल दिल के पास ये कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं विविध भारती से। दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। दोपहर 2:30 पर गीत गुंजन कार्यक्रम आप विविध भारती से सुनेंगे, और शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

श्रोताओं, कल सुबह 10 बजे महिला बहनें अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगी नारी मंच। कल शाम 6:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकती हैं। कल शाम 6:30 पर हमारे यहाँ से कार्यक्रम होगा घर आंगन। कल शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हमारी पसंद।

श्रोताओं, कल रात्रि 8 बजे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेगा व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। कल रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या के लिए हम आपको आकाशवाणी

श्रोताओं, कल रात्रि 9:15 पर विविध भारती से सुनेंगे आप सदाबहार सुरीले कार्यक्रम, और कल रात्रि 10 बजे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी नजर किया जाएगा। कल रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और कल रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल शाम 5 बजे आप हमारे यहाँ से फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो हिसार सुनेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। कुछ ही लम्हों बाद सुबह के 6:55 हुआ चाहते हैं। अब संस्कृत समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्र हितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपराम सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिं अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंताराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्याम स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानाम आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा

बताया है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुजोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुजोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर-18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आजाद सिंह के संग। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

हाय श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम का आज शुभारंभ करते हैं। आज के पंचांग के साथ आज 6 जून शनिवार का दिन है। जून 2026 में पंचक 6 जून शनिवार को साय 7:03 से प्रारंभ होगा और 11 जून गुरुवार को प्रातः 8:16 पर समाप्त होगा। आज राहु काल प्रातः 8:51 से 10:36 तक प्रातः तक रहेगा। नक्षत्रों की आज बात करें तो आज श्रवण नक्षत्र सुबह 6:03 पर इसका योग था। श्रोताओं, आज सूर्योदय प्रातः 5:23 पर हो चुका है और सूर्यास्त शाम को 7:17 पर होगा। आयुष्योतम, अब मौसम का हाल जान लेते हैं। आज 6 जून 2026 को हिसार में मौसम गर्म और आमतौर पर धूप वाला रहेगा। दोपहर या शाम के समय गरज के साथ हल्की बारिश या आंधी आने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से होगा और रात का तापमान न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

और श्रोताओं अब आज का सुविचार। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जी श्रोताओं, जिंदगी के मायने हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जिंदगी दुख सुख का सम्मिलित संगम है। कभी हम सबकी जिंदगी में धूप है तो कभी छांव है, कभी जिंदगी में हार है तो कभी जीत है, कभी जिंदगी में उतार है तो कभी चढ़ाव है, कभी जिंदगी हमें बहुत कठोर बना देती है तो कभी हम मोम की तरह सरल

हृदय बन जाते हैं, पर दोस्तों जिंदगी कुछ होती ऐसी ही है। श्रोताओं, जिंदगी का साथ हमें किसी शख्स के जरिए नहीं बल्कि अपने कर्मों के जरिए

सबसे कहीं बहुत ऊपर होती है। श्रोताओं, ये शाश्वत सत्य है कि हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में दूसरों को नसीहत देने का काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, आसानी से किसी की आलोचना भी कर लेते हैं, आसानी से अपने मशवरे को किसी पर थोपने की कोशिश भी हमारी कभी कभी कामयाब हो जाती है। इन सब में मुश्किल काम पता है दोस्तों क्या है? सबसे मुश्किल काम दोस्तों इन सब में है चुप रहकर आलोचना सुनना। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कभी भी किसी के भी साथ चालाकी करते हैं, होशियारी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, किसी को जानबूझकर धोखा देते हैं या अपने मतलब से किसी का फायदा उठाते हैं ये सोचकर कि इसे क्या पता चलेगा। पर दोस्तों, पता किसी इंसान को बेशक ना चले, लेकिन उस सृष्टिकर्ता को तो चलता है जिसने हमारी रचना की है। श्रोताओं, जिसने हमें रचा है, बनाया है, हमारे कर्मों का बही खाता भी तो उसी के पास है। हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा या बुरा हर कर्म उसमें दर्ज होता है। श्रोताओं, माना जिंदगी में सब कुछ पाने की ललक हर इंसान में होती है, लेकिन उसे पाने का तरीका हमारा गलत नहीं होना चाहिए। कुछ पाने की चाह में हम किसी का फायदा उठाएं, छल कपट करें, किसी को धोखा दें या किसी की भावनाओं के साथ खेलें तो ये गलत है। ऐसा हम बिल्कुल ना करें। दोस्तों, हमें ये सोचकर अपने कर्म करने हैं कि कोई हमें देखे ना देखे, हमारे खुद की आत्मा और उस रचनाकार की निगाहों के दायरे में हम हमेशा अच्छे और बुरे कर्म करते हुए देखे जाते रहेंगे।

आई श्रोताओं, अब रामचरितमानस के पद का वाचन करते हैं। पहुंच जाए धीनुमति तीरा, हर्षि नहाय निर्मल नीरा, आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निप्र ऋषि जाने। अर्थात चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंची। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धुरंधर राशि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनि ही सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। अर्थात जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियों के वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि, सहित अनुराग वासुदेव पद पंकर हो दंपति मन अति लाग। अर्थात द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था।

आइए दोस्तों, अब आपको हम एक प्रसंग बताते हैं। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब अपने ही साथ छोड़ दें तब मनुष्य क्या करे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर अकेली होती हैं, फिर भी वही पूरे वृक्ष को खड़ा रखते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और धर्म की जड़ों से जुड़ा रहता है, उसे सहारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्मरण रखो, साथ देने वाले बदल सकते हैं, पर कर्म का फल और ईश्वर का साथ कभी नहीं बदलता। जब संसार तुम्हें छोड़ दे, तब समझना कि अब तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिला है। दोस्तों, जब ये अवसर मिले तो हम भी अपने मन को पूरी तरह श्याम के रंग में रंग लें, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके।

दोस्तों, आज का सुप्रभात कार्यक्रम बस यहीं तक। आवाज की दुनिया की दोस्त क्षमा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे चाहते हैं। अब आपको समाचार प्रभात के लिए हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ले चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12

0: वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीश।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।

0: पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीना।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्पलेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan's Cripps history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
5: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
4: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's clean energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
5: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
4: स्पीकिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूरत, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज द सिटी स्पिरिट एंड इट्स ट्रांजिशन इन टू अ ग्रीन सिटी। ही लॉडेड सूरत सर्क्यूलर वाटर इकोनॉमी मॉडल एंड द वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव व्हिच हैज टर्न्ड इनटू अ मास मूवमेंट ओवर द लास्ट 12 इयर्स। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
6: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
4: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable farming practices. A report.
7: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
4: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities.
7: India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
8: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time with the wider UN membership, I would not delve any further into this.
7: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal has said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
9: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
7: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. U.S. forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic. The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
10: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remained stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-dropped ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during the recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
7: In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in five districts till 9th of June. More from our correspondent.
11: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Keralam. Six districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining three districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
7: Meanwhile, the weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title.
4: The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Gukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
12: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कैलाश खेर, नकश अजीज और अल्तमश अजीज की आवाजों में हाउसफुल 3 फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं फरहाद साजिद अरफत महबूब और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और सुमिधि चौहान की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं हर्ष सक्सेना और भूमि त्रिवेदी की आवाजों में सब कुशल मंगल फिल्म का गाना। समीर अनजान हैं गीतकार और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

रोज रोज तुझे कॉलेज जाएगी, क्लब डिस्को में डांस करने, कहेगी कहेगी बेबी टेक मी फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, रोमांस करने, रोज रोज तुझे कॉलेज जाएगी, क्लब डिस्को में डांस

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए कैलाश खेर और मीत ब्रदर्स अंजन की आवाजों में कुमार का लिखा हुआ मीत ब्रदर्स अंजन का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है क्या सुपर कूल है हम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहीं
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए मोहित चौहान और उस्मान मीर की आवाजों में दुकान फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा है गीतकार और संगीतकार है श्रेयस पुराणिक।

अभी आप सुन रहे थे दुकान फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

टेलीविजन चैनल वेद भारती और आप है अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, अब आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ले चलते हैं एक विशेष कार्यक्रम के लिए।

0: बार आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पी रहे थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने लिखा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिली, बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथ ही लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी 1 दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
3: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
2: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
3: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं की बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
2: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
3: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
2: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
3: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना।
2: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
3: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
2: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
3: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है, तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
2: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी की सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
3: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
2: आप जिस तरह से कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
3: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्की उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
2: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे

0: भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा। निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम को हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं विविध भारती से आप सुनेंगे सदाबहार सुरीले कार्यक्रम।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। यशर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में। कौसिर मुनीर है गीतकार और संगीतकार है साजिद वाजिद और फिल्म का नाम है दावत-ए-इश्क़।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में, कभी उस पग में।

0: बजता ही रहा।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो या फिर कोई उदास अकेली रात, राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपनी कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

0: वन अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश खिदमत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार। कार्यक्रम के आगाज में हिसार के बेहतरीन प्रोमो सबसे पहले हम आपकी नजर करेंगे।
1: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
2: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
3: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
2: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
5: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
3: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय?
6: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison.
2: कोई कला में उत्कृष्ट है?
3: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
2: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
3: कार्यक्रम एक शख्सियत
2: हर सोमवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताज़ा खबरें।
7: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
3: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
8: मैं अल्लू बिल्ली घूमू अकेली।
2: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
9: अभी न जाओ छोड़ कर।
3: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
2: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
3: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
2: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: हर सुबह एक मौका है
3: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
2: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
3: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
2: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
3: आकाशवाणी हिसार के साथ।
10: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
2: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
3: रोज सुबह 7:40 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: नया बेहतर है
11: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
12: दिल चीज क्या है?
3: नया श्रेष्ठ है
13: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
3: नया उत्कृष्ट है
14: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
15: चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
3: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
3: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
3: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

हूँ आपका प्यार, आपका इंतजार, आपका ख्याल, आपका ख्वाब, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी सुरीली धड़कनों की सदा और आपके मखमली एहसासों की फरमाइश, आकाशवाणी हिसार।

श्रोताओं, आकाशवाणी हिसार आपकी बेसब्री का इंतजार है, आपकी मोहब्बत का करार है और बस बेशुमार बेइम्तहा आकाशवाणी हिसार से आप सबको प्यार है।

श्रोताओं, मोहब्बत नए आगाज के बयां के साथ आज एक बार फिर आवाज की दुनिया की दोस्त क्षमा आपके साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। हमारे सभी चाहने वालों को मोहब्बत से भरा नमस्कार।

हवा के हर झोंके से बस तेरी ही खुशबू आती है। हवा के हर झोंके से बस तेरी ही खुशबू आती है। कहती है अमृत से मिल घटा बनकर, ले हाथों में मेरा हाथ ले ले और बस एहसासों में तू मेरी मोहब्बत का आगाज कर ले।

दोस्तों, हवा के संग संग तो हम नहीं कहेंगे और घटा के संग संग भी हम नहीं कहेंगे। हम एहसासों के संग संग आपके साथ हमेशा चलते हैं और चलते रहेंगे। दोस्तों, ये मोहब्बत का एहसास है जो आपके और हमारे दरमियान यूं ही चलता है और चलता रहेगा। आप हमें चाहते रहेंगे और हम आपको कुछ नया सुनाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और आपका साथ लेकर हमेशा चलते रहेंगे। आप रहेंगे आकाशवाणी हिसार के हमेशा साथ, FM 102.3 MHz पर अपनी दोस्त क्षमा के साथ। फिलहाल आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार कार्यक्रम। तो दोस्तों, कार्यक्रम का पहला जो पड़ाव है उसे हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की कुछ खास खबरें आपकी नजर। श्रोतों, राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता, स्वच्छता और पौष्टिकता को लेकर शिक्षा विभाग दिलचस्प प्रयोग करने जा रहा है। स्कूलों में खाना बनाने वाले कुक कम हेल्पर्स को हर साल दिया जाने वाला अनिवार्य प्रशिक्षण इस बार केवल होम साइंस या ड्राइंग के शिक्षकों के भरोसे नहीं रहेगा। अब स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाले और गणित के कठिन फार्मूले हल करवाने वाले शिक्षक फूड सेफ्टी और किचन हाइजीन का पाठ पढ़ते नजर आएंगे। जी हां, 8 जून 2026 को सुबह 10 बजे से अग्रोवा खंड के आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में विशेष प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इस हाई प्रोफाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम में 4 जिलों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के चयनित शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सीधे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की प्रोग्राम पॉलिसी ऑफिसर मिस प्रेप्सा सैनी हिसार में शिक्षकों को प्रशिक्षित करती नजर आएंगी।

श्रोताओं, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नेशनल बोर्ड से 9 शैक्षणिक कार्यक्रमों की मान्यता हासिल की है। मान्यता MBA, MCA, MTech, पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी के BTech कार्यक्रमों को मिली है। मान्यता से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारिता को रोजगार अवसर और बढ़ेंगे।

दोस्तों, मौसम का मिजाज फिलहाल तो आपको पता ही है और इससे खबरदार रहने की भी जरूरत है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पाकिस्तान पर लगातार नए बादलों का फुटाव और निर्माण जारी है। इसकी वजह से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में 6 जून से यानी आज से तेज हवाएं, आंधी, अंधड़ और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां अलग अलग समय पर जारी रहेंगी। 8 से 10 जून के बीच मौसम साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। 10 जून को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, आंशिक असर दिख सकता है। 12 जून को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम फिर करवट लेगा, आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और श्रोताओं, 19 और 20 जून को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में फिर बदलाव आएगा, 22 को प्री मानसून बारिश संभव है।

वाकई दोस्तों, इस पल में एक आप हैं और एक हम हैं। आपके एहसास हमारे साथ हैं और हमारे एहसास आपके साथ हैं। किसी और की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। अब आप ही बताइए दोस्तों, हम कुछ ना कहें फिर भी आप हमारे दिल की बात समझ लेते हैं, और आप कुछ ना कहें फिर भी हम एहसासों के जरिए आपके दिलों की दास्ता को समझ लेते हैं। यही तो मोहब्बत की दास्ता है, जो नया आगाज लिख देती है, और इस आगाज से एक नया अंदाज बनता है, और आपकी दोस्त हर बार कोशिश करती है कि एक अलग अंदाज़े बयां के साथ आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर हो। फिलहाल आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर अपनी दोस्त क्षमा के साथ। तो दोस्तों बताइए, हम कुछ कहें कि ना कहें। भाई आप भी चाहते हैं कुछ कुछ तो हम कहें, क्योंकि कुछ कुछ कहने से कुछ बातें होती है, मुलाकातें होती है एहसासों के जरिए, और मोहब्बत का नया आगाज शुरू हो जाता है। तो इस आगाज को हम सरेआम करेंगे, और आप भी अपने दिलों की दास्तां को हमें बयां करेंगे अपने जवाबों के जरिए। जी हाँ, आपको इंतजार है, हमें बखूबी मालूम है कि आपको किस चीज का इंतजार है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने दिल की ये बात आपसे कह दें, जो अक्सर हम हर बार कहते हैं कि दोस्तों ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। हम उन्हीं श्रोताओं का नाम इस कार्यक्रम में लेंगे जो हमारे दोनों सवालों के जवाब सही हमें लिखकर भेजेंगे। फिर भी आप देखिए ना, हमें फरमाइश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी अपने दिलों के हाथों मजबूर हैं, और हम अपने कुछ सीमाएं और कुछ बाधाएं हैं जिनके आगे मजबूर हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए आपसे दो सवाल अब हम करते हैं। उससे पहले आपको कहेंगे कि आप दोनों सवालों के जवाब के साथ अपने गांव और शहर का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, और अपनी पसंद के 2-3 गीत लिखें, जिनमें से एक गीत हम आपको सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। नंबर एक बार पुनः सुनिए, 9729253272। और अब आज का हमारा पहला सवाल, आप तैयार होंगे हमारा पहला सवाल नोट करने के लिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग कौन सा है। आपको उस जलमार्ग का नाम बताना है। सवाल पुनः सुनिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग कौन सा है। यह है आज का हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल सुनिए, सन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पाने वाले इन भारतीय अर्थशास्त्री का नाम क्या है। सवाल पुनः सुनिए, सन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पाने वाले इस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम क्या है। आपको इनका नाम बताना है। ये आज के हमारे दोनों सवाल हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाबों का। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत, दिल ने ये कहा है दिल से।

0: दोस्तों, हम भी आपकी धड़कनों को बखूबी समझते हैं और प्यार करने की जहां तक बात है तो वो तो हम आपसे करते ही हैं। ये कहने की कोई बात नहीं है दोस्तों, दिल हमारा भी आपको चाहता है और आपका दिल भी हमको चाहता है। आकाशों हिसार के हर कार्यक्रम को आपका दिल चाहता है। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी धड़कनों में हमारी सदा को हमेशा हमेशा एहसासों के जरिए बसाए रखिए। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। दोस्तों, आपको इंतजार है। जी हाँ, हम जानते हैं कि आपने जो दो जवाब हमें लिखकर भेजे उसके सही उत्तरों का इंतजार आपको है और अपनी पसंद के नगमे सुनने का इंतजार भी आपको है। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा अंतराल हम यहाँ लेंगे, उसके बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, लौटकर आपकी दोस्त क्षमा फिर बहुत जल्द आपके साथ होगी कार्यक्रम नमस्ते हिसार में।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, कार्यक्रम नमस्ते हिसार में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। और आइए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आज के हमारे जो दो सवाल हमने आपसे किए थे उनके जवाब आपको बताते हैं। हमारा आज का पहला सवाल आपसे था, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल मार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है 10° चैनल। और आपसे हमारा दूसरा सवाल था, सन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पाने वाले इस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम क्या है? इनका नाम है अमर्त्य सेन। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत सारे श्रोताओं के जो जवाब हैं वो सही मिले हैं। आप हैं गोंदर करनाल से किरण पाल बुम्बक, तेज पाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सुमन, सोनिया, रोशनी देवी। आपके दोनों जवाब सही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे ये अगले श्रोता हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। आपको भी शर्मा साहब बहुत बहुत बधाई। और हमारे ये श्रोता हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। आपको भी राहुल साहब बहुत बहुत बधाई।

भाई, आपके भी दोनों जवाब सही हैं। और आप हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और इनका समस्त विश्वकर्मा परिवार। आपको भी रामशरण साहब बहुत बहुत बधाई कि आपके भी दोनों जवाब हमको सही मिले हैं। और ये हैं हमारे नियमित श्रोता, गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश। जांगड़ा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने भी हमें दोनों सवालों के जवाब सही लिखकर भेजे हैं। और आप हैं सुंदरनगर हिसार से मोनिका गुजर, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुलेख और सुरेश गुजर। आपके भी दोनों सवालों के जो जवाब हैं वो सही हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, हमें जो सबसे पहला जवाब लिखकर भेजा है वो हमारे नियमित श्रोता है, और अक्सर नहीं, मैं हर बार कहूंगी कि इनके दोनों जवाब सही होते हैं। आप हैं ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना। अवाना साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको डबल मुबारकबाद हम इसलिए देंगे कि आपने सबसे पहले हमें सही जवाब लिखकर भेजा है। तो आपकी पसंद का नगमा हम आपकी नजर करेंगे। आपने राजकुमार फिल्म का नगमा सुनना चाहे, तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई, ये नगमा हमें भी बेहद पसंद है, तो आइए आप और हम साथ मिलकर सुनते हैं तुमने पुकारा और हम चले आए। आपकी नजर ये नगमा।

दोस्तों, आपने भी हमें दिल से पुकारा तो आपकी दोस्त दिल से आपके पास पहुंच गई, यानी है एहसासों के जरिए आपकी दोस्त क्षमा हमेशा आपके साथ होती है। कार्यक्रम नमस्ते हिसार में फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार FM 102.3 MHz पर। दोस्तों, जिन श्रोताओं ने हमें दोनों जवाब सही लिखकर भेजे हैं उनमें हमारी एक श्रोता है कुतुबपुर से मोनिका, जिनका नाम छूट गया था। इनके भी दोनों सवालों के जवाब जो हैं सही हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएं। आप हैं उमरागांव की 21 वर्षीय पहलवान स्वीटी मलिक ने अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। वियतनाम में 23 मई तक आयोजित चैंपियनशिप में वह 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती मैट पर उतरी थी। इस प्रतियोगिता में एशिया के कई देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इतने बड़े मंच पर सिल्वर मेडल जीतना स्वीटी के लिए केवल एक पदक नहीं बल्कि करीब एक दशक की मेहनत, संघर्ष और अनुशासन की कमाई है।

दोस्तों, कोच संजय ने इनके बारे में बताया कि स्वीटी ने करीब 10 साल पहले कुश्ती की शुरुआत की थी। बचपन में जब वह अपने चाचा के साथ गांव के अखाड़े में जाती थी, वहां पहलवानों को देखकर उनके भीतर भी कुश्ती के प्रति रुचि जागी। धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदल गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी वो उमरा गांव स्थित एशियन पब्लिक स्कूल के अखाड़े में अभ्यास करते हैं। कोच के अनुसार सफलता के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि कठिन मेहनत छिपी है। स्वीटी की दिनचर्या सामान्य खिलाड़ियों जैसी नहीं रही। सुबह 2 घंटे अभ्यास, दोपहर में अतिरिक्त ट्रेनिंग और शाम को लंबे सेशन के बाद वह रोज 7 से 8 घंटे तक पसीना बहाती हैं।

श्रोताओं, श्वेती के लिए ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं था। वर्ष 2018 में उन्होंने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई। अब इनकी नजर अगले लक्ष्य पर है। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। तो दोस्तों, स्वीटी के हौसले को और इनके जज्बे को हम सब सलाम करते हैं।

दोस्तों, छुपाने की तो बात ही नहीं है। हम तो छुपाना चाहते भी नहीं हैं कि हम आपसे बेहद तहे दिल से मोहब्बत करते हैं दोस्तों। और छुपाने की बात वहाँ आती है जहाँ प्यार कम होता है। आपसे तो हमारी मोहब्बत बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए एहसासों में जो हमारे साथ चलता है उससे छुपाने की ज़रूरत कहाँ होती है, क्योंकि आप एहसासों के जरिए ये समझ जाएंगे कि आपकी और हमारी दास्तां कितनी खूबसूरत है। आकाशवाणी हिसार के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है, और ये खूबसूरती में चार चांद तब लग जाते हैं जब आप हमेशा हमेशा हमारे साथ होते हैं। आप आकाशवाणी हिसार के साथ हैं और हम आपके साथ हैं FM 102.3 MHz पर। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त क्षमा के साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार। दोस्तों, आज एक जानी माने शख्सियत का जन्मदिन है, यानी उनकी जयंती है। आप हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और राजनेता सुनील दत्त साहब। जी हाँ, सुनील दत्त साहब, इनका असली नाम बलराज दत्त था। मदर इंडिया, वक्त और पड़ोसन जैसी फिल्मों में इन्होंने शानदार अभिनय किया, और सुनील दत्त ने अपने चार दशक के करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, वो एक सफल राजनेता भी थे और निर्देशक अभिनेता भी थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो जोकी के रूप में की थी, और मदर इंडिया के सेट पर लगी आग, भीषण आग में इन्होंने कूदकर नरगिस की जान बचाने के बाद दोनों में प्यार हुआ और 1958 में उनकी शादी हुई। दोस्तों, फिल्मों से लेकर असल जिंदगी में भी एक ये हीरो रहे, और इस हीरो को हम सलाम करते हैं। और इन पर फिल्माया गया ये बहुत ही सदाबहार नगमा सुनते हैं, ए मेरी जोहरा जबी। आइए सुनते हैं।

दोस्त, तुम हंसी है नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुर्बान हम आप पर जरूर हैं। ये कुर्बानी एहसासों के जरिए होती है दोस्तों, आवाज के जरिए होती है। आप हमसे जुड़ते हैं, हम आपसे जुड़ते हैं, और आप आकाशवाणी हिसार के एहसासों से यानी कार्यक्रमों के एहसासों से जुड़ते हैं, और तभी बात आगे बढ़ती है। और ये बातों ही बातों में एक ऐसी मुलाकात हो जाती है आवाज के जरिए, ऐसे लगता है कि ये बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। जी हाँ, इसी को कहते हैं सच्चे एहसासों की दास्तां, जो आपकी आकाशवाणी हिसार के साथ जुड़ चुकी है। फिलहाल आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार FM 102.3 MHz पर। आइए दोस्तों, अब आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। नासा के यान ने मंगल के रहस्यमयी क्रेटर की तस्वीरें भेजी है। जी हाँ, नासा अंतरिक्ष यान साई के हाल ही में मंगल ग्रह के बेहद करीब से गुजरा और वहां की नई तस्वीरें भेजी। फ्लाई बाय के दौरान यान करीब 4609 किलोमीटर दूरी तक पहुंचा, जहां उसने हुजुन्स डबल रिंग क्रेटर समेत मंगल के दक्षिणी इलाके कैद किए। नासा ने मंगल के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल ग्रेविटी असिस्ट

0: दोस्तों, आपके और हमारे बीच में जो बंधन है उसे हम अनजाना नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि ये बंधन तो बहुत बहुत पुराना जाना पहचाना है। आप हमें पुकारते हैं और हम आपके साथ होते हैं। आप हमें बुलाते हैं, हम आपके एहसासों के साथ होते हैं। आप हमें चाहते हैं, आपकी चाहत को हम अपने हर बार साथ ले जाते हैं। इस मोहब्बत की नई दास्ता के साथ कि फिर से लौटेंगे तो नया आगाज लेके लौटेंगे, आपकी मोहब्बत साथ लेके लौटेंगे और इस एहसास के साथ कि ये बंधन हमेशा हमेशा आपके साथ यूं ही जुड़ा रहे। इस बंधन को अपने दिल में दोस्तों आप यूं ही बनाए रखिए और हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए। दिल से दिल तक, जो दिल की बात है वो दिल तक पहुंचती है और हम आप तक पहुंचाते हैं आपके दिलों की बात, हमारे दिलों की बात और आकाशवाणी के दिलों की बात। तो दोस्तों, आज दिलों की बात बस यहीं तक, एहसासों की बात बस यहीं तक। एक नए आगाज के साथ आपकी दोस्त क्षमा आपके लिए लेकर फिर लौटेगी कार्यक्रम नमस्ते हिसार, लेकिन आज इस कार्यक्रम से चाहती है इजाजत। नमस्कार।
1: நீ ரொம்ப அழகா இருக்க.
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम।

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहिब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला।

0: ये आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी है रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर

0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए मैटिनी शो।

एटनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु मैत्री।

लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल तो हॉट डॉग को करके गो हॉट डॉग को करके गो सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा और घुमाओ सीट

0: शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे, जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया, शांतनु मोहिता ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

मैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की एक सलाह देता है, संदेश

0: देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म, क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यदि नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है, और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है,
1: जानी नहीं,
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

chair.

जी, तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही है या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही है। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है। वो अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद जरूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

यह आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है, जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं, जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है। ये है थ्री इडियट्स फिल्म का आखिरी गीत, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे की रचना, शांतनु

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती

0: व्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानस उधार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

श्रीराम चंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमर।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: आता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
1: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला,
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: जी बताइए, कैसे हैं आप लोग?
1: हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। और आपकी टिप्पणियां, आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ, या यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ, थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है, यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है, कभी समय से पहले कुछ हो जाता है, तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है। और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है। तो ऐसा नहीं है, जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं, आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की सदाबहार सुरीले कार्यक्रम। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में 8 से 10 जून तक आयोजित होने वाले भारतीय क्षेत्र के उत्तरी जोन 2 के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कल विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन से संबंधित व्यवस्थाओं, प्रतिनिधियों के आगमन तथा विभिन्न प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद तथा हरियाणा

अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, यातायात प्रोटोकॉल, सुरक्षा तथा कार्यक्रम स्थलों पर की जा रही व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों की सुविधा और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित नव निर्मित सभागार का लोकार्पण और महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। इसके साथ ही सभी गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों व आम नागरिकों ने भी लगभग 101 पौधे रोपित किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र कम बहुउद्देशीय

0: हॉल का उद्घाटन किया और करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुष यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के वजीफे में जल्द वृद्धि करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का गीत जारी किया। विश्वविद्यालय की रिसर्च जनरल पीएचडी शोध कार्य से संबंधित शोध गंगा पोर्टल सहित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। जींद स्थित चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर रामपाल सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पत्रकारों से विशेष बातचीत में प्रोफेसर रामपाल सैनी ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कहा,
1: ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी मुझे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की दी है। उन्होंने जो विश्वास मेरे में व्यक्त किया है उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। रिसर्च में और शोध में और नवाचार में, स्किल डेवलपमेंट में इस विश्वविद्यालय का नाम होगा। आने वाले विद्यार्थी यहाँ से मैक्सिमम प्लेसमेंट लेके जाए, ये मेरा उद्देश्य है।
0: भालौट एम झज्जर उप नहर के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसानों, ग्रामीणों और नहर विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद एवं सकारात्मक पहल के परिणाम स्वरूप सभी पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है, जिससे अब दोनों नहरों के पुनर्निर्माण कार्य को दोबारा गति मिलेगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करते हुए सिंचाई ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य की सफलता तभी संभव है जब उसमें स्थानीय लोगों की भावनाओं, सुझावों और आवश्यकताओं का सम्मान किया जाए। इसी सोच के तहत किसानों की चिंताओं को गंभीरता से सुना गया और सभी पक्षों को साथ लेकर समाधान का रास्ता निकाला गया। गौरतलब है कि भालौट एवं झज्जर सब ब्रांच से जुड़े अनेक गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने नहर के तल को पूरी तरह सीमेंट कंक्रीट से पक्का किए जाने पर आपत्ति जताई थी। किसानों का कहना था कि ऐसा होने से भूजल पुनर्भरण प्रभावित हो सकता है तथा कि क्षेत्र के जल संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। किसानों की इन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नहर विभाग ने विभिन्न तकनीकी विकल्पों पर विचार विमर्श किया और लगातार संवाद की प्रक्रिया जारी रखी। फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पलवल में पहली बार साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही
2: FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोतो, आपको लिए चलते हैं विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम सुनवाने के लिए।
3: जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो, जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों नहीं जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वही श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के 4 भाग, अंतःकरण के 4 अंगों में से मन एक है। बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है, संकल्प विकल्प, चंचलता, दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को, बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे।

उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहां उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे

उलझना नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी वो पछताओगी कुछ ऐसे के ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी ये

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तिजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोनारे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नजर में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम चार या पांच गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सोना रे सूरज रे, ये क्यों और कब, जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृत कृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार में समापन किया गया है। विषय पूर्णतः तथ्यपूर्ण और दार्शनिक है। अभिनव गीत चयन भी प्रशंसनीय है। अल्पकालीन सूचना पर भी आशा है कि यह संक्षिप्त इबारत सफर की गरिमा बरकरार रखेगा। बिल्कुल, ये आप सभी श्रोताओं पर है। हो सकता है आज का यह सफर थोड़ा छोटा हो जाए, आप सभी लोग कम से कम टिप्पणियां कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानी को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो या सूरज जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपकी गीत हमारी पसंद से मेल खा रही है या नहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही है। मंदाकिनी जी, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीति और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वही श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाएं। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखती है कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़े। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

रोशन की संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी है अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता, इस जीवन की धूप शाम को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे रे मन। मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है, आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगे, मन को शीतलता मिलेगी, बहुत सुंदर। वही गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई। वैसे रोज सुबह आ जाती है मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी, मिली ठंडक आपको। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है। सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है। ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है। रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा, और इसी तरह हमारे जीवन में दुख के बाद सुख जरूर आता है। सूरज स्वयं

0: जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए जू जू याद आएंगे जोड़ते जाएंगे। सूरज से जलते रहना फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नदीर धरे, और आपने और भी गानों का बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रेक उपयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: ये

जी तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में, जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है, एक बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आरामदेह सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती, भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है, कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का, मन ढूंढता एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे मैं हूँ तुम अकेले नहीं हो, मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा, फिर नजर उठती है आसमान की ओर जहाँ सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है, तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो, अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई है, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो आपने कह दिया है। एक शोधा लिख रही है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है, रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक शोधा लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं और क्या चाहिए आपका, ये जो है ना मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखती है कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो तो संभव है, लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई, जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए, सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो होता ही, आप कहीं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी, बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहां कहां से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे ओरे पिया, रे कबीरा नैना रे, सजन रे चलत मुसाफिर मुंह लिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने ही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल, आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं, मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तू खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागनी, दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है, और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था क्योंकि रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहां रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

डी और गुलजार साहब के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रही हूँ कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती है तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़ी बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुजीरा सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है मेघा रे बदरा छाई रे खाई है रे हमने कसम जा रे वाह। और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है, आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था। दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखी री सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीरे धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आप बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज में गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वही एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतिया ले जा वाह जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है बहुत नया गाना आपने चुना है बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई रे चंदा रे आओ रे ओ रे पिया ये गाने, नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, रे मन सुरमेगा ओ रे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया। पिया तो से नैना लागे रे क्या बात है, रे मा तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है मंदाकिनी जी, आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की जात। साथी रे सुनिए आप, साथी रे ये वे हमारी जान ले लेता है ना।

हमारे श्रोता लिख रही है कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से, क्या बात है बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है सूरज है चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में महबूब के रूप में अपनेपन के रूप में देखता है तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात वो जो प्रार्थना वो जो इल्तजा वो जो प्रेम की बौछार वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक

0: मन से मन का बंधन सच्चा, मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे, कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं, रे बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यही थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

व्यस्त हो रहा है। क्या अभी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का

आज तो पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपे, लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेट का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
6: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले

0: विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका के सीनेटर मंका ढिंगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रहे सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चंगेज खान, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्नाटे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

सब कुछ त्यागा। छठ छठ पीऊ मैं तो राम रस चालिया, राम के भजन में बजाऊ मैं तो तालियां। राधा चंद्र सांझा का रास जहाँ चला रे,

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
1: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: आवाज़ आशु भोसले की, और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज़वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मशरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा।

0: चेतन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हजरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका है लता मंगेशकर, बोल है एसएच बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।

0: ولی چهرگی
1: من چهرگی
0: من چهرگی

0: मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400002।

सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्य किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

Thank you.

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

जन्म मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में हर गजर में।

रोज मैं अपने ही प्यार को समझाओ रे, रोज मैं अपने ही रोज मैं अपने ही प्यार को समझाओ, वो नहीं आएगा मान नहीं पाओ, शाम ही से प्रेम की पत्र मैं जलाऊं, फिर वही दी

जिस मन मेरा आस लिए डोले, प्रीत भरी पानी साथ मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की दिन खोले, लाख तरह

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने और दत्तरेंगी भाटापारा से ये है हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दुख।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से मीर मोहम्मद लखानी, जुबैदा खातून लखानी, विहान लखानी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाह। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। रामसिखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल। मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख। कनाडा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाही गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाही गीत चाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: शहजादियों से भलाई कैसे हो सकता है? ये आज लाल किले के पूरे दरबार में नाचे।
2: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
1: नहीं,
2: मैं कहता हूँ नाचो। गुलाम, इनके
3: रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है। आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की दगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ है ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
1: जहां बना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाही भी हमारे साथ हो लेगी।
0: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
1: जी आलम बना,
0: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
1: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
0: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
1: जो हुक्म वाली जा।
2: तस्लीम।
0: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
2: मेरा नाम एमिली है योर मैजिस्ट्री।
0: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम? योर
2: जी योर मैजिस्ट्री।
0: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
2: आलम पनाह, आलम पनाह।
0: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
2: जी जी हाँ, जान पाना, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया ही नहीं?
0: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
2: ओह, हमारा अच्छी किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल है, हम यहाँ आपकी आपकी पनाह में रहने चाहते हैं।
0: ठीक है अमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
2: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
2: नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो।
2: ओ जय पाना, आप कितने अच्छे हैं, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो, तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
2: ओ शुक्रिया आलम पनाह, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
3: जी हाँ जहां पना, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
3: जी हाँ आलम पना, अंग्रेज तो बंगाल बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो है ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
3: जी हां जहांपना, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब जहां बना, अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपाही वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं, इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
3: जी हां अली मकाम, इसमें कोई शक नहीं।
0: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पखड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
3: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
0: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
3: जी आदि कद, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में है, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे।
0: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
3: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
0: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेहयाब होंगे, इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
3: बेशक आलमपना, बेशक, इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
0: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
3: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
0: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ
3: हुजूर? वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
0: और अब क्या हुआ उसको?
3: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान, हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
0: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
3: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी
0: है। ओह, ये तो बहुत संगीन मामला है।
3: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसके सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
0: इस वक्त वो कहां है?
3: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
0: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेज सिपाह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
3: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
0: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
3: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलमपना को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कुछ भी कर चुके थे।
0: सुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
3: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
4: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
0: कौन? सकीना बेगम? यहां फौरन भेजो। जी जहां पना
2: आलम बना, गुस्ताखी माफ फरमाए।
0: हाँ हाँ बोलो बेगम, यहां क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
2: आलिजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जरूरत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
0: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
2: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों की फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
0: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
2: जी नहीं आलम पना।
0: वो कमीनी कहाँ है?
2: जी बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
3: जहां पना ने याद फरमाया।
0: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ बराबर के खेमे में है वो बदसात।
3: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
2: जी नहीं आलम पना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
2: जैसी आलम पना की मर्जी।
3: आलम पना, मैंने तहकीकात कर ली है,

0: 属下一一下
1: 我将我的协助协助能做给多倍पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
0: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
1: खुदोश मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम है ये धमाके। हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
0: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: जयपना, मुझे आपकी राय इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान

0: मैम का फर्क होता है, सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, फिर हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलम पना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वह मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मेजेस्ट्री के रट लगाए जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खान को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आला पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी और यहां पहुंचने ही वाली है। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहनशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।

0: ये आली जहा वली है शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से गिला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह बहुत खूब।
0: और आलमपना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें बराई।
0: हुजूर वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बी टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप, टेरेंस लुइस।

0: टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
1: था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुंह लग गया।
0: डांस के स्टेज में टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं,
1: वो पढ़े लिखे भी नहीं।
0: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बाद

0: झूठ। जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं वो जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
0: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर इन्हों दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूं इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और रेमेडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए आप 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहां हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: आना था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतनी इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये

0: प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला, और जब मुझे वो मिला वो बेशुमार मिला, मेरे यू नो इर्द गिर्द जो यू नो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था, तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला के आया, बुला बुला उसको, बुला उसको, बुला ये नाचेगा हमारे लिए
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि टेरेस आए अभी टेरेस नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: वो जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट पीटर्स हाई स्कूल, तो मैं रहता था अंधेरी में। लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े, तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केज में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैं कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मैं मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही ही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तान है, अजीब ही दास, मेरी बहने रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात तक कि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद
0: हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तान के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे लिए तो
1: मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मारनी पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी दिखाता था पढ़ाई में, मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं,

0: अच्छा करता है वो, और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
0: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, फिर आपकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाए और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोग लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो।

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है तो मेरे डैडी 5 साल और बढ़ा दिए और बोले कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देते थे उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी, 17 साल की थी,
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन दे रहा था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन्होंने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके आप ले लो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने।
0: ओह,
1: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तो इतना पढ़ा लिखा है, तो इतना होशियार बच्चा था, तो डॉक्टर बनने वाला था और फिर तुम माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस की एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सबने ना कर दी, मैंने कहा नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बढ़ेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सूझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए।
1: हाँ।
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होता।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख के मेरा बच्चा आगे जाए, वो ये बहुत बड़ी बात है ना।
0: और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बात की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए।
1: खुश हो गए,
0: खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के? तू इतना पढ़ता है तो फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में, बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर? तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
1: नहीं होता, तो वो अकल बाद में फिर मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा हो रहा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर

लोग मेरे मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में। फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और मैंने कि मेरी फिल्म करो। तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा ना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़,
1: कई बार
0: लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से नहीं।

0: निकाल देना है, इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ो।
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था या जिंदगी में उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।
2: मैं जिंदगी का साथ

महसूस हो जहां गम और खुशी में फर्क न।

0: ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग से कहते हैं क्या है, तब तो मुझे कोई थी नहीं, मेरा मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, क्योंकि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है। तो कभी वो लत या लगाम लगाई।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं,
1: शुक्रिया,
0: है ना। तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला

0: नहीं कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो कई हद तक मैं सोच रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना।
0: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था
1: अच्छा।
0: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं,
1: वाह वाह।
0: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ
0: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो
1: हाँ
0: मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ। लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहां जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें भी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है। जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है। तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त पे मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे। तो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं की बगेगी। तो मेरा कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया। किसी की गलती नहीं है।
1: फिर
0: मैं
1: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूंगा तो नहीं, क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म में जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगाने वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती है
1: वो वाला डांस सेक्शन।
0: वो वाला हाँ। तो मैं रिया को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे लेकिन अभी पहले इसको
0: इसको
1: हाँ।
0: तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये कोई गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टी, नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तो पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो जो तुम्हारी ट्रेनिंग है लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: कहानी है,
0: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी वियनीज वॉल्स वो हमें चाहिए,
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे,
0: हाँ।
1: माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में
0: हाँ।
1: और
0: फिल्मों
1: कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
0: उसके
1: इन्फ्लुएंसेस अलग होते हैं।

0: सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बिठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो उसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक ओनली 24 ईयर्स, सर मैं नहीं करना, मैं बोलूंगा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है। ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, आमा ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा, मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, पिंसी रोड का घर था मलबाइल में, मैं गया, मैं बोला कि मुझे सीखना है, मैं ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली, गाना ए आर रहमान का गाना था वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट में, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा, अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ग्रंथ है, अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर, द 5 C's ऑफ कैमरा। तो भी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए, मैंने अनिल मेहता सर को बता रहे कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ, तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: तो और बड़े बड़ी फिल्म थी
0: हाँ,
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मौर्य ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया,
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलू वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर से मेरी कोई औकात नहीं उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन,

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

चल चल गए अपना बॉम्बे टॉकीज। टॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। डुपर है अपना बॉम्बे।

आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे। अपने संदेश भेजने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9729253272, यानी 9792253272। शुरू करते हैं सिलसिला आपके मैसेजेस का। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सरबत, सानवी और कल्पना देशमुख ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हैं भेजने वाले। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। ममना ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने हमें मैसेज भेजा है। शेरवानी स्कूल गंज रुनवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने मैसेज भेजा है हमें। करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत भी जुड़ गए हमारे साथ। गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब सुन रहे हैं हमें इस वक्त अपने परिवार के साथ। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने हमें मैसेज किया है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो हमें सुन रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से, लेकिन इन्होंने मैसेज में लिखा है गुड मॉर्निंग, तो मैं बता दूं कि जी इवनिंग हो चुकी है हमारे यहाँ तो सहारनपुर में, पता नहीं अब तक मॉर्निंग कैसे है लेकिन यहाँ पर इवनिंग हो चुकी है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल सोपान तायड़े मलकापुर से, नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर ने मैसेज भेजा है। एक और मैसेज देंगे पहले गाने से पहले, जो कि हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और उनका पूरा परिवार। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम में तो उठाइए फोन और मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार, मैं हूँ आनंद।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे, मेरे यानी आनंद के साथ आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यदि आप भी जुड़ना चाहें हमारे साथ तो उठाइए फोन और हमें फटाफट से मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9729253272 यानी 9792253272। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने मैसेज भेजा है। माधरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहैर हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल ने मैसेज भेजा और साथ ही मेरे लिए कुछ लिखा है इन्होंने कि मंगलवार को आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय था आनंद जी, आपकी आवाज भी प्रशंसनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज आया है वरिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं भेजने वाले। मोतारा महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार हैं अगले मैसेज को भेजने वाले। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बुजुर्ग टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू हैं इस मैसेज को भेजने वाले। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कर, अनिल जैन और दर्शन जी। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का नाम है संदेश आपके गीत हमारे और मैं हूं आनंद दीदी। आप भी जुड़ना चाहें हमारे साथ इस कार्यक्रम में तो उठाइए फोन और हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 9729253272 यानी 9792523272। मैसेज हमारे पास अगला पहुंचा है गांव चौधरीवास हरियाणा से, मांगे राम सतोड़, ऋतु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार का। कह रहे हैं कि आपने प्रेम रोग फिल्म का गाना शामिल किया कार्यक्रम में, चार चांद लगा दिए और ये सुंदर आवाज आनंद जी की, बहुत ही शुक्रिया आपका जो आपको मेरी आवाज सुंदर लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। उदयपुर राजस्थान से दिलीप पाहुजा ने मैसेज किया है कि वो और उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है इस वक्त। अगला मैसेज हमारे पास आया है नई बस्ती गंज डुडवा से, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम है इस मैसेज को भेजने वाले। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार हैं सुनने वाले। गंज रुणवाड़ा से ही हमारे साथ हैं शमसुल, कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान खान और कलीम अंसारी। अगला मैसेज है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर हैं भेजने वाले। और अगला मैसेज है मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने, पीएस नावकर और तुषार करांगले। बहुत ही खूबसूरत सरनेम है आप लोगों के, मैं हमेशा बोलता हूँ इस शो में। मंसूर रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब और पलक लुबना यश मंसूरी ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज है गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद, साहिबा, मिखाइल और जैनब का। कांवर कॉलोनी जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली भी जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। और अंतिम मैसेज इस गाने से पहले जो कि आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरव सायना और निवान शर्मा है इस मैसेज को भेजने वाले। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे मेरे यानी आनंद के साथ आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यदि आप भी जुड़ना चाहें हमारे साथ तो उठाइए फोन और मैसेज कीजिए। हमारा नंबर आपको मालूम ही है, 97-292-53-272 यानी 9729253272। अगला मैसेज हमारे पास आया है रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। एक और मैसेज पहुंचा है हमारे पास ठाकुरावाला गांव लोहगढ़ से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अभिराज सिंह हैं इस मैसेज को भेजने वाले। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव वर्मा, गरिमा शर्मा ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे लिए है नबी हसन अब्बासी ने भेजा है और बहुत सारे फूल भेजे हैं, ये नहीं बताया कि कहाँ से भेज रहे हैं। आनंद जी, सच में आनंद आ गया, आपने मेरा मैसेज शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसके लिए मैसेज किया। मत किया कीजिए, मेरा काम है आपके नाम को शामिल करना, आपकी पसंद के गीतों को सुनवाना। पतरोड़ा से हमारे पास मैसेज आया है मंगल जनागल, राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील हैं हमें मैसेज भेजने वाले। वार्ड एक पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता ने हमें मैसेज भेजा है। एक और मैसेज लेंगे अगले गाने से पहले, जो कि आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा है भेजने वाले। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आकाशवाणी हिसार से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे। मैं हूं आनंद। और यदि आप भी हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो नंबर है हमारा 9729253272। परिहार से ममता, कविता, रोहित, विनोद टेलर, राजीव नगर हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, सोनू शर्मा और राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, निर्मला चौधरी वास से रिक्वेस्ट है आपसे कि एक ही मैसेज में बहुत सारे लोगों के नाम ना लिखने पड़े, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हर एक शख्स जो हमें सुन रहा है वो अलग अलग अपने अपने नंबर से मैसेज करे। हमें भी लगेगा कि काफी लोग सुन रहे हैं, अब नहीं जानते जो दूसरे लोग हैं वो सुन भी रहे हैं या सिर्फ अपना नाम ही भेज रहे हैं मुझ तक पहुंचाने के लिए। पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान है भेजने वाले। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेम, लता, डिंपल देवांगन ने हमें मैसेज भेजा है। जितेंद्र गंगवा हिसार से हमें सुन रहे हैं इस वक्त। एक और मैसेज हमारे पास आया है, उन्होंने नहीं लिखा कि वो कहाँ से हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं बहुत सालों बाद आज हिसार लौटा हूँ और आपका शो सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। नाम है रोहित यादव। तो स्वागत है रोहित जी आपका हिसार में, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में आपका स्वागत है। जिला मुरादाबाद, ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरेश खातून ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज आया है नरोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फन।

0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
1: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो वो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
3: Will you be remembered as a great scientist, Saint Thomas Alva Edison?
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत, हमारे आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर। नंबर है हमारा 9729253272। मैसेजेस का एक बार फिर से करते हैं सिलसिला शुरू। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत ने हमें मैसेज भेजा है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी, अनारगली बाजार जगराओं से हमारे साथ जुड़े हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, विराम साबिर, राही मेहराज, जहाजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमें सुन रहे हैं इस वक्त। अगला मैसेज हमारे पास आया है राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी का, गांव फांसी हिसार से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास है शिवांश चौधरी, तारीफ सिंह, सेवदा गांव बांसड़ा हिसार से इन्होंने मैसेज भेजा है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और उनका पूरा परिवार। गंज डुंडवाड़ा से ही मोहम्मद कलीम, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर ने मैसेज भेजा है। बठिंडा रोड मंडीदावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया और उनका पूरा परिवार भी सुन रहा है इस वक्त हमारे साथ। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मिका, बलविंदर वर्क, जसतेग विक और मिका विक ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है हरपति पलक पदम विलेज भोड़ा फतेहाबाद से। हिंदी में लिखा कीजिए और कोशिश कीजिए जहां नाम खत्म हो जाए वहां पर एक कोमा लगा दे ताकि मैं समझ जाऊं कि एक नाम खत्म हो गया है, ऐसे पता नहीं लगता है कौन सा नाम कहां पर खत्म हुआ है। अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा, नरेंद्र हुड्डा, अंकिता, सुमू और तानिया भी इस वक्त जुड़े हुए आकाशवाणी हिसार के साथ। आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म नूरी से।

आनंद जी कार्यक्रम सुन रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मैसेज हमें भेजा है दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। यदि आप भी मैसेज हमें भेजना चाहते हैं तो उठाइए फोन और भेजिए मैसेज। हमारा नंबर है 97-292-53-272। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे मेरे यानी आनंद के साथ। अगला मैसेज हमारे पास आया है बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल हैं भेजने वाले। बेवड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तन्नू ने मैसेज भेजा है। गम्हारिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार हैं हमारे साथ। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और हिमाक्ष ने मैसेज भेजा है। राजेश साबले, पाटिल राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त। अगला मैसेज हमारे पास आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा हैं भेजने वाले। गांधीनगर गुजरात से पी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष ने मैसेज भेजा है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने हमें मैसेज भेजा है। जेवरा हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र भयान, शमशेर भयान, सुरेंद्र भयान और मनोज भयान। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, चकला बाजार समाना शहर, पंजाब से पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता, हंसमुख लाल, बुलबुल, संजीव और

पूरा खुश दिल परिवार भी इस वक्त हमें सुन रहा है। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्रांगी, ग्राम लसूरिया पाता, तहसील नरसिंह,

और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। मैसेज हमारे पास पहुंचा है रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा। श्रीमती रंजू बाई, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हैं इस मैसेज को भेजने।

वाले मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश, प्रणिता, सिद्धांत और उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिर और वाणी जयजान ने हमें मैसेज भेजा है घरौंडा जिला करनाल से। और ये अंतिम मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ जो कि आया हमारे पास इंदिरा विहार दिल्ली से, बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी का। आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे, मेरे यानी आनंद के साथ आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं, नंबर हमारा वही है 9729253272।
1: देखो देखो टूटना छुड़ी नहीं है मेरा।
0: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बजने को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल

दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा। अभी 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसके उपरांत 6:20 पर होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत।

आज शाम 6:30 पर कार्यक्रम युवा उमंग में सुनेगा वार्ता, विषय है सोशल मीडिया व मानसिक तनाव। हमारे साथ होंगी प्रोफेसर पायल चंदेल। शाम 7 बजे कार्यक्रम किसान वाणी में बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान, उद्देश्य, आवश्यकता और किसानों को होने वाले लाभ। फसल चक्र अपनाकर मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाएं। 7:30 पर कार्यक्रम महारे गांव प्रसारित होगा।

पूरे सप्ताह की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा आप सुन पाएंगे आज रात्रि 8 बजे और 8:30 पर कार्यक्रम खुला आकाश में सुनिएगा संगीत एक फिल्म से।

राष्ट्रीय हिंदी समाचार रात्रि 8:45 पर और राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार रात्रि 9 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 से आप सुन पाएंगे विविध भारती के प्रसारण।

कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण आज रात्रि 10 बजे और रात्रि 11 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष भाग 6, जो कि हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी हिसार से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। शाम के 6:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र।

0: शाम के 6:10 होने को है। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेती से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, तकनीक नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण समय की मांग है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण मीठा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। सिरसा में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। और फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत कल सुबह पलवल में साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि तकनीक नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि युवाओं को समय की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले। वे आज पानीपत जिले के समालखा कस्बे में सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र के वार्षिक स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व तेजी से बदल रहा है, ऐसे में यहां कौशल विकास केंद्र की स्थापना युवाओं को बदलते युग में खुद को स्थापित करने में मददगार होगी। केंद्र द्वारा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ कौशल प्रशिक्षण के लिए समझौता किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह केंद्र हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि 21वीं सदी भारत के युवाओं की सदी है। यदि युवाओं को सही कौशल, सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वे न केवल अपने परिवार की तकदीर बदल सकते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है उसकी मजबूत नींव हमारे गांव ही है। उन्होंने कहा, यह सबके लिए गर्व का विषय है कि यह केंद्र आसपास के 100 गांवों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह प्रयास गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र में किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहराया कि प्राकृतिक खेती करने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दिया गया है, क्योंकि जीवामृत, घन जीवामृत और प्राकृतिक खाद तैयार करने में देसी गाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को 3,000 रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ साथ खेती को अधिक व्यवस्थित बनाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मीठा ने आज अपने जींद आवास पर जन दरबार लगाकर आम जन की समस्याएं सुनी। इस दौरान पहुंचे लोगों की शिकायतों का अधिकांश मौके पर ही निपटान किया गया। जन दरबार में पुलिस सहित तमाम विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। जन दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. कृष्ण मीठा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है।
2: मेरे ख्याल से कांग्रेस को स्वयं देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या रहा। मैं बाकी हरियाणा की तो क्या बात करूंगा, जींद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसपी साहब और उनकी पूरी टीम कितनी मुश्तैदी से काम कर रही है। चाहे कोई भी मामला आया, अभी मामलों को सोल्व करने का काम किया, चाहे वो गोल्ड का मामला था या कोई मर्डर केस सोल्व करने का काम किया।
1: देश के विभाजन और रिफ्यूजी शब्द के इस्तेमाल पर बोलते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे पूर्वजों के लिए रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह गलत और

0: ठेस पहुंचाने वाला है। लोग किसी दूसरे देश नहीं बल्कि अपने ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए थे। हमारे बुजुर्गों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कॉकरोच पार्टी पर तंज कसते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि यह पूरा ढांचा सिर्फ सोशल मीडिया प्रबंधन पर टिका हुआ है, यह बहुत जल्द जनता के सामने ढेर हो जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर और विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों की वजह से व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। सिरसा में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मनाया जाएगा। इसको लेकर आज एक दिवसीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और योग क्रिया में भाग लिया। उन्होंने योग प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से भी रूबरू होते हुए कहा, युवा ही नहीं सभी लोगों को योग को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि योग दिवस से पहले प्रदेश भर में प्रोटोकॉल योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
1: योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के दिशा निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश के अंदर हर रोज योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 2014 से प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरे विश्व के अंदर देश के अंदर युवाओं ने इसको अपनाने का काम किया। आज पूरा विश्व जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का काम करता है। योग से सारे जुड़ रहे हैं। नियमित योग करने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसके अंदर योग बहुत ही जरूरी है, जो टेंशन से मुक्त करता है, रोगों से मुक्त करता है।
0: रिफ्यूजी शब्द को लेकर लोगों में फैले रोष बारे पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसी बातों की वह निंदा करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह केवल सोशल मीडिया में है, उनका कोई वजूद नहीं है। पंजाब में होने वाले चुनाव पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, पंजाब की जनता भी भाजपा की ओर देख रही है। फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पलवल में पहली बार साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं एवं आमजन को फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेल मंत्री ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आज युवाओं से साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
2: साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा फिट इंडिया और फिट हरियाणा को लेकर जो एक मूवमेंट चला हुआ है उसको लेकर ही साइकिल ऑन संडे सुबह 6 बजे हुड्डा सेक्टर 2 के ग्राउंड से सभी युवा साथी एक फिट इंडिया का मैसेज देने के लिए, फिट रहने के लिए साइकिल चलाएंगे। आप सब आइए, संडे ऑन साइकिल में हम सब मिलकर साइकिल चलाएंगे।
0: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल की देवा बॉक्सिंग अकादमी में तेज तूफान से हुई क्षति का निरीक्षण किया और अकादमी की संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका तेवतिया से मुलाकात कर सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।
3: जहां भी आपदा होगी वहां पे हम जाएंगे और जो भी मदद होगी सरकार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से हम वो मदद करेंगे। जो हमारे खिलाड़ियों की बात थी उनके लिए भी जहां भी सामाजिक रूप से हमें खड़ा होना।

0: जो चीजें बच्चों के लिए खिलाड़ियों के लिए उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। इस प्रकार की आपदा में हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए, जहां पे भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, हम भी आएंगे।
1: मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, तकनीक नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण समय की मांग है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

आयु है कि चलना सीख रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता, भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा उमंग, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता, विषय है सोशल मीडिया व मानसिक तनाव। हमारे साथ हैं डॉक्टर पायल चंदेल।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक कुमार। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी महत्वपूर्ण विषय युवाओं में बढ़ती सोशल मीडिया की लत पर चर्चा करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ की मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर पायल चंदेल जी को। डॉक्टर पायल जी, आकाशवाणी हिसार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।
0: तो शुरुआत करते हैं, पहला सवाल जो श्रोताओं तक उसका जवाब पहुंचे वो है, सोशल मीडिया की लत क्या है और कैसे पता चले कि कोई युवा सामान्य उपयोग करता है या इसकी गिरफ्त में आ चुका है।
1: बहुत ही अच्छा बिगिनर सवाल आपने पूछा यहाँ पे। सोशल मीडिया की लत, लत से मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिससे आप चाह के भी नहीं छूट पा रहे हैं ना। जब तक आपने पकड़ा है तब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उसने आपको पकड़ लिया तो वो लत हो गई। यही हाल सोशल मीडिया का है
0: जी।
1: कि अब सोशल मीडिया ने आपको जकड़ लिया है तो लत लग जाती है। तो इस लत को समझने के लिए क्विक अगर हम 5 सिम्टम्स लक्षण की बात करें, तो क्या ऐसा होता है कि यदि फोन कुछ समय तक आपसे दूर हो तो बेचैनी होने लगती है
0: जी।
1: हम अपना नींद, खाना, पढ़ाई ये चीजें टाल कर भी क्या फोन पर लगे हुए हैं कि सोने का समय हो गया लेकिन हम लगे हैं कि बस 5 मिनट और, बस 2 मिनट और, हम रियलाइज करते कि एक पूरा घंटा निकल गया है। अगर फोन हाथ में ना हो तो जिंदगी में बड़ी बोरियत सी, बेचैनी सी यदि महसूस हो रही है, और यदि हमारे आसपास के सभी व्यक्ति हमें टोकने लगे, सभी व्यक्ति से मेरा मतलब है जो आपके माता पिता या गुरुजन जैसे व्यक्ति हैं, या अगर आप माता पिता के एज की बात करें तो इवन बच्चे तक टोकने लगते हैं कि आप तो सारा दिन फोन में रहते हैं
0: जी।
1: तो यदि ऐसा टोका जा रहा है बार बार और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर कोई टोक रहा है आपने उसको छोड़ दिया कि पूरा दिन मैंने फोन नहीं इस्तेमाल किया तो लत नहीं है, लेकिन यदि आप छोड़ नहीं पा रहे तो ये बिल्कुल लत होने के लक्षण है, आप एडिक्ट हो चुके हैं यहाँ
0: जी। बिल्कुल मैम, अब दूसरा सवाल हम ये करते हैं कि आज के युवाओं में सोशल मीडिया की लत तेजी से बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है वो बताएं।
1: कारण कई सारे हैं। प्राइमरी कारण जो आता है वो है बायोलॉजिकल, हमारा शरीर। हमें हर चीज में खुशी चाहिए होती है, सोशल मीडिया हमें वो खुशी दे देता है
0: जी।
1: आप जैसे ही सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप एक अच्छा रील देखते हैं, आपकी पोस्ट को एक लाइक मिलता है, कोई कमेंट मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, वो आपको फील गुड कराता है, और ये फिर एक लूप बनता चला जाता है। आप फिर पोस्ट करते हैं, फिर किसी का कमेंट आता है, आपको अच्छा लगता है
0: जी।
1: एक तो ये बहुत बड़ा कारण है जो आपको लेके जाता है बार बार सोशल मीडिया की ओर। दूसरा, हमारी जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि हम तुलना बहुत करने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: अपने दुख से हम दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। दूसरों की सोशल मीडिया पोस्ट्स देख के एनालाइज करते हैं कि वो जीवन में कितने सुखी हैं
0: जी।
1: और एक तरह से हम दूसरों पर नजर रख रहे होते हैं, ये कहां गया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बार बार बार बार लोग नाम से तक चेक करते हैं कि अच्छा सोशल मीडिया पे गए, विवेक जी की प्रोफाइल को चेक किया जाए, वो अब क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही हाल विवेक जी का भी हो जाएगा कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पे डालना जरूरी है। जब तक वो नहीं डाल के सबको बता दें कि मैंने ये काम किया, तब तक हमें भी अंदर तसल्ली नहीं आती और देखने वाले भी ढूंढ ढूंढ के तुलना करते हैं, तो तुलना से भी हमें फिर परेशानी होने लगती है। तीसरा, कि क्योंकि सब सोशल मीडिया पे हैं और यदि आप ना हो तो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे बच्चे हैं सारे क्लासरूम्स में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते, अरे तूने वो पोस्ट देखी, तूने वो रील देखी
0: जी।
1: तो यदि आपने नहीं देखी तो आप सोचते मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज पे मिस कर रहा हूं
0: जी।
1: ये कुछ कारण है जो बार बार बार बार खींच के हमें सोशल मीडिया की ओर लेके जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो मैम इस लत का युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य पूछा, तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंपैरिजन बहुत सामान्य प्रभाव है जो सोशल मीडिया से व्यक्ति में देखने मिलते हैं। एंग्जाइटी की, क्योंकि आपने कुछ पोस्ट किया, अब मुझे लगा रही इसने ये अचीव कर लिया, मैं तो अभी पीछे हूं। और जो पोस्ट करते हैं, हम सब जानते हैं, जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो उस पोस्ट के पीछे का बहुत बड़ा जो संघर्ष होता है वो हम नहीं पोस्ट कर पाते, वो सिंगल एक पोस्ट निकल के आती है। और पोस्ट हमेशा हम वो करते हैं जो खुशनुमा लम्हे हैं। हम किसी भी संघर्ष को, दुख को, परेशानी को पोस्ट नहीं कर रहे होते। तो देख के ये लगता है कि इनकी जिंदगी परफेक्ट है और मेरी वाली में सारे स्ट्रगल्स हैं। ये बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देता है व्यक्ति को। फिर व्यक्ति डिप्रेस्ड भी फील करने लगता है क्योंकि उसे अपने आसपास के सारे ही व्यक्ति सफल दिखते हैं। जैसे आपने बच्चे हैं, बच्चे ग्रुप्स में फोटोज खिंचाते हैं, पोस्ट करते हैं, एक बच्चा जिसने देखा कि अरे इसके तो इतने सारे मित्र हैं, मेरा कोई भी मित्र नहीं। जबकि असल जिंदगी में शायद वो भी इतने मित्र नहीं है, लेकिन फोटोज तो हम साथ खिंचा सकते हैं। ये बच्चों को लेके जाता है लोनलीनेस की तरफ, डिप्रेशन की तरफ। बच्चे अवसाद महसूस करते हैं यहाँ कि मैं अकेला पड़ गया, मेरे साथ कोई नहीं है, वो दुख को फील करते हैं। एंड कंपैरिजन ट्रैप, जो हमने पहले भी बात किया कि हर चीज को हम कंपेयर करते हैं, वो चाहे हमारे कपड़े हैं, चाहे हमारे मार्क्स हैं, हर चीज से हम कंपेयर करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले 12वीं के 10वीं के रिजल्ट्स जो आए हैं, सभी पेरेंट्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेरे बच्चे के इतने नंबर आए, मेरे बच्चे के इतने नंबर आए। कुछ चीजें बदली हैं, कुछ पेरेंट्स ने 53% पे भी पोस्ट डाला कि आई एम प्राउड ऑफ माय चाइल्ड कि इसने 53% के साथ में ये क्लास उत्तीर्ण की। लेकिन ऐसों की संख्या बहुत कम है। अब आपके बच्चे के 98% भी आ गए, लेकिन आप परेशान हैं उन पेरेंट्स की पोस्ट से जिनके 99.6% आ गए। तो वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली नहीं, बट कहीं अनकॉन्शियसली वो हिट जरूर करता है। और ये सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। और ये लूप बन जाता है
0: जी।
1: जैसे आपका डोपामिन का लूप बनता है, फील गुड का लूप बनता है, जो आपको वहां पकड़े रहता है, वैसे ही नेगेटिव इमोशंस का भी लूप बन जाता है। यदि आप एक चीज से दुखी हुए तो तुरंत जो दूसरी चीज दिखती है उससे भी आप फिर दुखी ही होने लगते हैं, क्योंकि आपने ओरिएंटेशन अपना वो बना लिया।
0: बिल्कुल।
1: तो वो ओरिएंटेशन आपका फिर सोशल मीडिया तक नहीं रह जाता, वो ओरिएंटेशन को हम अपनी असल जिंदगी में भी ले आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: असल जिंदगी में भी बैठ के हम कंपेयर करते हैं, इसके जूते ऐसे हैं, मेरे जूते ऐसे हैं, इसके पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, और इन सब चीजों से सिवाय परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग विद्यार्थियों की पढ़ाई, एकाग्रता और करियर पर असर डालता है?

0: बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट्स आ रही हैं वो आती हैं बहुत छोटी छोटी सी पोस्ट्स, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड की पोस्ट। तो ये जो 8 सेकंड, 10 सेकंड की जो पोस्ट्स आ रही हैं, इन पोस्ट्स ने हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम कर दिया।
1: बिल्कुल
0: अब हम लंबा फोकस नहीं रख पा रहे किसी चीज पे। आप एक 10 सेकंड का पोस्ट यदि डालें, हो सकता है लोग उसे पूरा सुन लें। यही हमारी बातचीत, यदि ये 20 मिनट तक जाती है, लोग 20 मिनट तक उतने ध्यान से इस बात को नहीं सुन पाते,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन ही नहीं बचा है। हम लोगों का जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, उसके साथ में सोशल मीडिया ने इतना खिलवाड़ कर दिया है कि बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए ही हम कहीं ध्यान लगा पाते हैं। अब आप ध्यान ही नहीं लगा पा रहे तो पढ़ाई या एकेडमिक लाइफ तो खत्म हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: एकेडमिक्स के लिए तो आपको घंटों घंटों, आप सफलता की कहानियां जितनी भी देख
1: हाँ
0: सुन रहे हैं, आप
1: बिल्कुल
0: बात भी करते हैं, उन कहानियों में हम देखते हैं बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहा है।
1: जी
0: हमारा बच्चा 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहा अगर वो सोशल मीडिया के गिरफ्त में आ गया तो। बिल्कुल एकेडमिक्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पहला, आपका स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम हो गया। दूसरा, आपका इंटरेस्ट ही नहीं बचा।
1: बिल्कुल
0: मजा तो आपको यहाँ आ रहा है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए आ रहा है। बच्चा अपनी किताब में छुपा के, अपने बिस्तर में छुपा के फोन में घुसेगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उसको वहां मजा आ रहा
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बताएं कि अभिभावक किन संकेतों से पहचान सकते हैं कि उनका बच्चा सोशल मीडिया का आदी बन गया है?
0: अभिभावक, सॉरी टू से, लेकिन हम अभिभावक भी अपने ही आप में इतने बिजी हो गए हैं, हम में से भी आधे सोशल मीडिया की ही लत में फंसे हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन अगर हम ध्यान रख सकते हैं अपने बच्चों का, तो हम बिल्कुल ये चीज देख सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि बच्चा हर समय फोन अपने हाथ में रख रहा है। घर पे भी है तो भी फोन टेबल पे या कहीं और रखा नहीं है, रादर वो बच्चा फोन को अपनी पॉकेट में या उससे भी ज्यादा अपने हाथ में लेके घूम रहा है।
1: जी
0: कोई नोटिफिकेशन आता है, तुरंत प्रभाव से वो फोन को खोलता है, या कई बार बिना नोटिफिकेशन आए भी बच्चा फोन को खोल खोल के यदि देख रहा है। आपने मना किया कि फोन रख दो, तो या तो वो आपसे 2-5 मिनट का समय मांगता है, या वो चिड़चिड़ा जाता है
1: जी
0: कि ठीक है रख रहा हूं ना। मतलब आपसे अच्छी तरह से वो फोन की वजह से यदि बात नहीं कर पा रहा, तो ये रेड फ्लैग्स हैं
1: बिल्कुल
0: जो हमें समझ आता है कि ये बच्चा हमसे ज्यादा, अपने आप से ज्यादा इस एक मशीन को महत्व दे रहा है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: तो ये बताएं कि माता पिता और शिक्षक मिलकर इस समस्या को कम करने के लिए क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं?
0: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट हमें बात इसी पे करनी है, क्योंकि समस्या है हम सब जानते हैं,
1: जी
0: वो छुपा नहीं है। बात यह है कि समाधान कैसे होगा।
1: बिल्कुल
0: माता पिता को घर में पता चल रहा है, टीचर्स को क्लासरूम्स में पता चल रहा है, यूनिवर्सिटीज में फोन लाने पे कोई बैन नहीं है, बच्चे क्लासरूम में टेबल पे फोन लेके बैठते हैं। तो बात यह है कि वो फोन लेके बैठ रहे हैं, उससे आप उनको रूल्स लगा के नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ छोटे नियम आप अपने क्लासरूम के लिए बना सकते हैं। जैसे कि बच्चा फोन ले रहा है, बच्चे के हाथ में फोन है, लेकिन मैंने बच्चे को फोन पे किताब दे दी
1: जी
0: कि ये मेरी क्लास है। जैसे कि मैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यदि पढ़ा रही हूं, मैंने एक किताब बच्चे को दे दी, बच्चे ने फोन पे किताब को खोला हुआ है, बच्चे की इच्छा पे है, तुम चाहो तो तुम फोन पे खोलो, तुम चाहो तुम लाइब्रेरी से ले आओ, लेकिन मेरी क्लास में तुम्हारे हाथ में ये किताब होनी चाहिए। अब अगर बच्चे के हाथ में वो किताब है, तो बच्चा क्लास में जो चर्चा चल रही है उसको किताब में देख के पढ़ेगा,
1: जी
0: सोचेगा। मतलब मशीन उसके हाथ में ही है, उससे मशीन छुड़वाई नहीं कि वो मशीन की एब्सेंस को लेके परेशान ना हो। मशीन उसके हाथ में, लेकिन मशीन में वो है जो हम चाहते हैं। तो मशीन में किताब है, किताब
1: जी
0: हम चाहते हैं। एक छोटा सा कदम ये हो सकता है। दूसरा कदम ये हो सकता है कि आप अपनी क्लास के लिए बच्चे से रिक्वेस्ट करें कि आप अपने बैग में रख लें अपना फोन, सिर्फ मेरी क्लास के समय में आप कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, आप स्विच ऑफ करके क्लास में रखें, क्लास खत्म हो गया आप आराम से अपना फोन यूज करें।
1: जी
0: टीचर्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बच्चे गुरुजनों की बात सुन लेते हैं। पेरेंट्स के साथ में बच्चे भी थोड़ा लाड में आ जाते हैं, और हम पेरेंट्स भी थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके। हमें
1: बिल्कुल
0: बच्चे का मूड खराब होता हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी छोटी सी चीजें जो कि पेरेंट्स को खुद

0: अपने व्यवहार में लानी होगी। मैं हाथ में फोन लिए घूमूं और अपने बच्चे से कहूं कि तुम्हें घर आते ही फोन यहाँ टेबल पे रखना है, बच्चा नहीं रखेगा। लेकिन मैं घर जाते ही फोन टेबल पे रखूं और घर में एक अनसेड रूल बन जाए कि घर में फोन इस टेबल पे ही रखे हैं, कोई फोन अपनी जेब में नहीं रख रहा, तो सभी उस टेबल पे रखेंगे, फिर चाहे माँ बाप है चाहे बच्चा है, कोई भी, कोई फर्क नहीं है।
1: अपने से करनी होगी,
0: अपने से करनी होगी। आप बोल के बदलाव नहीं ला सकते, आप खुद में बदलाव लाके बेशक बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कुछ नो फोन जोन्स बनाने होंगे, जैसे खाना खाते हुए आप बिल्कुल फोन अपने आसपास कोई नहीं रखेंगे, नो मैटर कितना नोटिफिकेशन आ जाए आप नहीं देखेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें, या कुछ जैसे एक घंटे का हमने ब्रेक ले लिया, सारे फोन्स घर के स्विच ऑफ है एक घंटे तक, कोई तूफान नहीं आएगा अगर एक घंटे आप फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन वो एक घंटा आप अपने दिमाग को ये फीड देते हैं कि ये फोन मेरा गुलाम है, मालिक नहीं। वो फील बहुत बड़ी चीज है, वहां से आप सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं, बच्चे भी बड़े भी।
1: जी, तो ये तो रही इस पे कंट्रोल की बात। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि क्या सोशल मीडिया का सकारात्मक और लाभकारी उपयोग भी संभव है, युवा इसे किस तरह अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: बहुत हद तक सोशल मीडिया या ये फोन नाम की जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है, ये इतनी बड़ी पावर है हमारे हाथ में। बस बट अफसोस की बात सिर्फ ये है कि हम इसे पावर के रूप में ना यूज करके हम इसके दास बनते चले जाएं। यदि हम इसको अपना दास बना ले, बहुत बढ़िया, ये हमारा दास बन के रहेगा। जैसे कि आज मुझे कुछ भी जानना है, किसी भी बारे में जानकारी लेनी है, तो मुझे सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएगी। मैं हिसार आई हूं, मान लीजिए मुझे हिसार में जूते खरीदने हैं और मैं वो जानकारी चाहती हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट से मुझे दिख जाएगा कि हिसार में मुझे सबसे बढ़िया जूते कहाँ मिलेंगे।
1: बिल्कुल।
0: मैंने सोशल मीडिया को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। यही यदि मुझे कोई जॉब करनी है, मैं उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हूँ। कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन पे इसी तरह की पोस्ट्स होती हैं कि ये वर्कशॉप यहाँ हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, ये एडमिशंस यहाँ खुले हुए हैं, ये जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे हैं। तो उन चीजों को यदि हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम हर समय जब भी हम फोन खोल रहे हैं, हम अपने करियर में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी बार खोला एक नई जानकारी मिली। तो जानकारी हमें जितनी मिलेगी, उतना ही हमारा जो विजन है वो बढ़ता चला जाएगा, और वो बढ़ता हुआ विजन सर्टेनली हमें एक अच्छे करियर की तरफ लेके जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो जब तक हमारा दास है, ये बहुत अच्छा दास है, ये आपको हर वो चीज देगा जो आप मांगेंगे। लेकिन यही नुकसान है, ये आपको हर वो चीज देगा जो आप मांगेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मांगना क्या है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट मांगेंगे, ये वही देगा। आप करियर एडवांसमेंट मांगेंगे, ये आपको वो भी देगा। तो आपको चुनना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अंत में युवाओं और अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी आकाशवाणी के माध्यम से?
0: ये आई एम ब्लेस्ड, आई फील ग्रेटफुल टू ऑल इंडिया रेडियो हिसार कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक डायरेक्ट कनेक्शन में हूं हजारों लोगों के, जो इस समय, इनफैक्ट हजारों से ज्यादा, लाखों लोगों से कनेक्टेड हूं इस समय जो मुझे सुन रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल धन्यवाद मैं आपको प्रेषित करती हूं, और इस माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूं युवाओं से कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका जीवन देश का है, आपका जीवन परिवार का है, आपका जीवन समाज का है। आप इस जीवन में, आप बिल्कुल, बच्चे आजकल कहते हैं हमारा जीवन, दिस इज माय लाइफ माय रूल्स, बिल्कुल इट इज योर लाइफ योर रूल, बट देन योर डिसीजन आल्सो, आप इस जीवन को लेके कहां जाना चाहते हो, आपके पास में क्या टारगेट है अपने जीवन के लिए, अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप अपने आप को कहां देखते हो, और हर दिन आप कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। यदि हर दिन बच्चा अपने आप को इस सवाल का जवाब देगा, फॉर श्योर वो अपने लिए एक अच्छी ही दिशा चुनेगा। कोई भी बच्चा, आप कभी भी पूछें कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, कोई बच्चा अपने आप को सोशल मीडिया एडिक्ट या ये स्मार्टफोन एडिक्ट या

0: ड्रग एडिक्ट के रूप में नहीं देखना चाहता, खुद सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। तो यदि वो कॉन्शियसली सोचेगा तो वो सफल ही होगा।
1: जी,
0: पेरेंट्स से हाथ जोड़ के अपील है कि जो हमारे युवा बच्चे हैं वो हमारे कहने से नहीं मानेंगे। पहला चीज, वी नीड टू बी

0: और यदि हम साथ मिलके काम कर रहे हैं तो बच्चे भी और हम भी दोनों ही खुश होंगे।
1: बिल्कुल
0: तो वो समझने की जरूरत है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम भी वही चाहते हैं जो हमारा बच्चा चाहता है और दिशा हमारी एक ही है। तो दिशा एक ही है तो हो सकता है मुझे अपने लहजे में थोड़ी नम्रता की जरूरत है कि बच्चा मेरी बात सुन सके। मैं गुस्से से बोलूं और बच्चा अड़ जाए कि कैसे बोल दिया, उसमें
1: जी
0: मेरा फायदा नहीं है। मुझे भी उसी लहजे में बच्चे से बात करनी है कि बच्चा मेरी बात को समझ सके, क्योंकि लक्ष्य हमारा ये नहीं है कि तनातनी हो जाए हम दोनों के बीच में। लक्ष्य हमारा ये है कि मेरा बच्चा एक अच्छी जिंदगी जिए, और आप सरप्राइज होंगे, लक्ष्य बच्चे का भी यही है। फिर भी हम एक दूसरे के आमने सामने दो टीम्स की तरह खड़े रहते हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट वी आर अ टीम, और बच्चा बच्चा है, बड़े हम हैं, तो बड़प्पन हमें ही दिखाना होगा।
1: जी
0: थोड़ा बड़प्पन दिखा के, थोड़ा प्यार से बाहें फैला के यदि हम बच्चे को पास आने कहेंगे, वो बिल्कुल आके गले लगेगा, और हमारे गले लगेगा तो बाकी सब चीजों से वो छूट
1: बिल्कुल छूट
0: जाएगा।
1: जाएगा, बिल्कुल। डॉक्टर पायल जी, आप और हमारी जो बातचीत है वो न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, न केवल भारत में बल्कि बाहर भी हमारे श्रोता बैठे हुए हैं जो आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छा,
1: इस महत्वपूर्ण विषय पर और बड़ी उपयोगी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: श्रोताओं, सोशल मीडिया का उपयोग करें लेकिन संतुलित और सजगता के साथ। इसी संदेश के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग। कार्यक्रम युवा उमंग में आज आपने सुनी वार्ता, विषय था सोशल मीडिया व मानसिक तनाव। हमारे साथ थी प्रोफेसर पायल चंदेल। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, शाम के 7 बजे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: नरेश भाई राम राम।
1: श्वेता बाण आपने राम राम और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भैया ने
0: राम राम। और अपने कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: तो श्वेता बाण के चल रहे आजकल काम में?
0: बस खेती बाड़ी का ही धंधा भी जाई भैया ने कर ली है और बाड़ी भी निकल आई है, इतनी इतनी सी बाड़ी हो रही है।
1: हाँ, बिलात बिलात तो ऊपर हो रही है।
0: हाँ, और सुतरी जमा रही खड़ी है तक तो।
1: लेकिन बिल्कुल यह बात तो सही है, देना तो परमात्मा ने है, उसे का आसरा पे सब कुछ चल रहा है। और बदलते मौसम में देखो, अपना जो हिसार का इलाका है इसमें हर तरह का मौसम अपन देखने मिल जाए। गर्मी के दिनों में जी तोड़ गर्मी और सर्दी के दिनों में जी तोड़ सर्दी।
0: हाँ।
1: और जो धूल बवंडर जो राजस्थान का एरियन देखा करें वह चीज अपन हिसार में दिख जाए,
0: क्योंकि राजस्थान का भी टच में पड़ा। हाँ पा तो आंधी आया करे जो पहले पूछ राजस्थान का नहीं तो आवे अपन
1: तो मतलब हिसार का जो वातावरण है ना वो कई डालते हैं आपने सहन करना पड़े है। गर्मी के हिसाब से
0: भी ज्यादा पड़े है, सर्दी भी ज्यादा भी पड़े है
1: बिल्कुल, और बारिश के दिन बारिश भी हो जाए है।
0: हाँ, क्योंकि अब की बार तो देखो लगभग जो फसल पकड़ना हुई थी ना जब लागे था आंधी तूफान गर्डा गाजा और मतलब बारिश करना रही तक पीछे से तक तो हो गई थी। ईद थोड़े से दिन हुए हैं भाई, थोड़ी सी ईद दो तीन दिन पहले भी कहीं कहीं हुई है।
1: बिल्कुल, कल भी जो है कहीं ना कहीं छिटा छिड़का बूंदाबांदी हुई है। और श्वेता बाण बात आप ये कहना चाहवा थी इसमें कि आज का जो दौर है वो वातावरण को देखते हुए या यूं लगा लो हम पर्यावरण का दूषित होने के कारण या ग्लोबल वार्मिंग जिसने कहा है उसके कारण जो है हमारा जो भारत में छह ऋतुओं का आगमन क्या करते उन ऋतुओं में भी जो है ना आगे पीछे का हिसाब सा बन रहा है।
0: हाँ,
1: जो जिस टाइम पे होनी चाहिए अगर दिन है वो उस टाइम तो आगन चल रही है।
0: हाँ, लेट होने लगे
1: बिल्कुल। देखा होगा आप दशहरे के टाइम पे रामलीला देखने जाया कर दे तो कितना सर्दी का रात ना प्रबंध करके जाया कर दे, लेकिन आजकल दिसंबर आधा आ जाए है जिद वह सर्दी शुरू हो है और पहला होली पाछत न लेकिन अप्रैल का 15 जो है पहले पखवाड़ा लग जो है ठंड रहा है
0: जो आप मान्य कर देंगे 6 महीने गर्मी के और 6 महीने सर्दी के, अब बल्कि 3 महीने बच रहे हैं सर्दी के।
1: हाँ,
0: जोर मार के
1: बिल्कुल। तो देखो परिवर्तन चलन लग रहा है इस चीज का, और इसका कारण अगर आप खेती में ले तो वो उसमें भी नुकसानदायक
0: बहुत नुकसान है क्योंकि प्रभाव पड़ा है पूरा पूरा
1: उस वातावरण का जो है उस पर बहुत ही असर पड़ने लग रहा है।
0: क्यों धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होया है जैसे जैसे मशीनीकरण का युग आया है तो उन चीजों के दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आने लग रहे हैं, लेकिन हमने समय रहते रहते अपने आप को बचा लेना है। और देखो आप अपनी धरती ने बचावांगे अपनी मिट्टी ने बचावांगे तभी आप आगे उस फसल और अच्छा उत्पादन ले पावांगे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो श्वेता बाण। और जो आपने धरती बचाने की बात करी है, धरती बचाने की बात करी है आपने, तो जो हम पारंपरिक खेती हमारी चल रही थी हरित क्रांति हमारे देश में आई जहां हमें गेहूं की पैदावार जो है 15-20 मन तक लिया कर दे चल के आज हम 70-80 मन तक पहुंच रहे हैं।
0: हाँ।
1: चाहे धान की पैदावार है चाहे और फसल है, हाइब्रिड भी आ गए हमारे बीच में इसके बाद, मतलब कृषि के अंदर जो है बहुत ज्यादा उन्नति की देश ने। अलग अलग प्रकार के हमने रासायनिक खाद उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग भी करा बहुत ज्यादा, लेकिन उस चीज में जाकर आज हमने उसके दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं। आज हमने देखा देखी का एक तो तरीका अपना लिया किसान भाइयों ने, भाई पड़ोसी ने यह लगा रखी है मैं भी वह फसल लगाऊं, उसकी फसल में कीड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा हम देखते नहीं, हम अपना ली में भी उसी तरह से जो है स्प्रे पेस्टिसाइड वो ट्रीटमेंट कर दे। और तीसरी बात क्या है कि किसान भाई जो आज का तो किसान जागरूक होने लग रहे हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, नई तकनीक ना अपनाने लग रहे हैं, तो उस तकनीक को अपनाते हुए जो है वो मिट्टी पानी की भी जांच जो है प्रॉपर कराने लग रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो जो आपने जिक्र कराया वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खेत बचाओ अभियान का एक कार्यक्रम जो है 1 जून से लेकर
0: 30 जून तक
1: 30 जून तक चलाया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारी धरती है उसको कम से कम रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग करके हम एक बढ़िया प्राकृतिक खेती जो पैदावार है वह लेके हम अपने शरीर को अपनी जमीन को अपने वातावरण को स्वस्थ रख सकें,
0: क्योंकि

0: जरूरत है इस चीज की, बहुत ही बड़े स्तर पर जरूरत है। हम भाइयों ने बार बार कहते रहे वहां की जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ो, थोड़ा तो शुरू कर सको हो आप, लेकिन ये कि ये अभियान चलाया जा रहा है 1 जून तक 30 जून तक खेत बचाओ अभियान, ये एक अभियान जागरूकता कार्यक्रम को नहीं बल्कि खेत किसान एवं गाँव को जोड़ने वाला पूरा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ जोर शोर तो चला रखा है। ये 1 जून तक शुरू होकर 30 जून तक चलेगा, महीने भर जो अभियान चलने वाला है। इसमें किसान भाइयों को यही समझाया जा रहा है, यही फोकस रखा जा रहा है कि खेत को बचाने, अपनी लागत को संतुलित करा, किसान को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए और इस अभियान को ऊपर तक लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, बल्कि पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र तक सांझी भागीदारी के मॉडल स्तर पर ये अभियान चलाया जा रहा है। और क्योंकि किसान भाइयों को उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, संतुलित खाद डले और धीरे धीरे हम जैविकता की तरफ चले जाए।
1: बिल्कुल सुविता बहन, आपने बताया यही तो मेन उद्देश्य है जो खेत बचाओ अभियान चलाया गया है। एक तो हमने कम से कम रासायनिक उर्वरक का, कीटनाशकों का प्रयोग करना, कम से कम जहां बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, और वो भी जो आपका कृषि विकास अधिकारी है उसके संपर्क में आके किस चीज की जरूरत है तब उसका प्रयोग करना है। इसके साथ साथ सुविधा बहन, कोई भी पैदावार लेना तो उससे पहले हमने मिट्टी पानी की जांच जो है वो जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि हर साल जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो किस कारण से अधिकता हो रही है, किस कारण से उसके अंदर कमी है, वो मिट्टी की जांच करेंगे तो हमें उसका प्रॉपर पता चल जाएगा कि इसमें किस चीज की कमी है। हमने यह चीज इसमें जिंक डालनी है, सल्फर यूरिया डालनी है, उर्वरक किस प्रकार से कौन सा डालना है कि नहीं डालना है, क्योंकि जब तक हम जांच नहीं करावांगे भाई, देखो अपने शरीर वाली बात है, बुखार हो रहा है, बार बार आप कोई दवाई ले रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा, तो डॉक्टर के पास जाते ही क्या करेगा वो, पहले टेस्ट कराओगा। हाँ। टेस्ट इसीलिए कराते हैं वो, ताकि हमें पता चल जाए कि इस आदमी की बीमारी कौन सी है, किस दवाई से ठीक होगी,
0: क्योंकि इलाज तो तभी संभव होगा जब बीमारी पकड़ में आओ।
1: यही चीज हमारी धरती के साथ भी है, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि इसमें मिट्टी में किस चीज की कमी है तो उसकी जांच करा कर हम उसमें पूरी कर सके। और इसके साथ साथ सुविधा बहन, हम प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खाद और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में भी किसानों को खेती बचाओ अभियान के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनको जानकारी दी जाएगी कि किस किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती या टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं उनको कैसे अपना सके हैं और प्रशिक्षण लेकर वो किस तरह से उसमें लागू अपने जीवन में कर सके हैं।
0: और किसान भाइयों को जैसे जोड़ के इस अभियान के तहत कौन सी फसल लें, कहाँ भी विधिकरण अपनाने की जरूरत है, कम पानी में कौन सी विकल्प हमारे लिए बेहतर होंगे, तो अभियान का उद्देश्य है कि केवल संदेश देना नहीं बल्कि खेत स्तर पर किसान की जो स्थिति है उसके अनुरूप सलाह देना होगा, जैसी परिस्थिति वैसी सलाह।
1: और इसके साथ साथ एक बात और हम कहेंगे, इसी अभियान का ही एक ये उद्देश्य भी है कि किसान भाई जब भी बीज खरीदे तो बीज का भी सही चयन करें, मिट्टी पानी की जांच होने के बाद अपने जो एडीओ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कृषि विकास अधिकारी है, उनके संपर्क में आकर उनसे पूछें कि हमारी जो मिट्टी पानी की जांच कराई है वो इस तरह से मिले तो हम कौन सी किस फसल की पैदावार ले। कोई जरूरी नहीं है कि हमने हर बार गेहूं बीजनी है या हर बार हमने धान लगाना है, बिल्कुल उसके साथ साथ अगर हम विविधीकरण का तरीका ले लो, चाहे फसल चक्र अपना लो, क्रॉप रोटेशन के हिसाब से अगर हम लेवांगे, अगर एक बार हम पारंपरिक खेती के हिसाब से फसल ले रहे हैं तो दूसरी बार अगर हम दलहन या तिलहनी फसल कोई भी अगर पैदावार में ले रहे हैं तो जमीन की उर्वरा शक्ति वैसे ही बढ़ जाएगी और मिट्टी जांच, पानी जांच कराने के बाद तो स्वाभाविक है कि हम पैदावार अच्छी ले सके हैं। तो अच्छे उन्नत बीज का चयन करें और फसल कौन सी लेनी है उसके लिए हमने जलवायु का भी देखना जरूरी है कि किस इलाके में किस तरह का वातावरण है तो वहां कौन सी फसल अच्छे तरीके से ले जा सके है और कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करके हम अच्छी पैदावार ले सके।
0: और इस अभियान के तहत जो किसानों को सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी जोड़ा जाएगा, बताया जाएगा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, सोयल हेल्थ कार्ड योजना से, मिनी बीज किट वितरण, दलहन एवं तिलहन मिशन, कृषि यंत्रीकरण योजना इसमें शामिल है। सभी विषयों पर बढ़िया तरीके से खुल के जानकारी दी जाओगी ताकि किसान अपने ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके और इस अभियान का फायदा उठा सके।
1: बिल्कुल।

0: ये हमने जो पहले बताया आपने उद्देश्य बताया कि किन किन कारणों से, अब बात ये आ जाए है श्वेताबन कि हमने इन चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई आज ये अभियान चलाना पड़ा इन चीजों के लिए,
1: हमने अपना खेती में खर्चा बढ़ा लिया है नरेश भाई,
0: क्योंकि जरूरत हमने इसलिए पड़ी कि हमने अपनी जरूरत से ज्यादा, धरती को इतनी जरूरत नहीं थी, उससे भी ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करके खेतों की जो उपजाऊ जो ताकत है वो घटगी, जमीन कठोर होगी, पर्यावरण और भूजल जो है हमारा, जमीन का जो पानी है वो प्रदूषित हो गया, जिस कारण जो है पैदावार में कमी आने लग रही है, बार बार जो इस तरह के हम खोज कर रहे हैं उसमें, तो वो किसानों के हित में न रह के वो एक नुकसानदायक होती जाने लग रही है। भूमि की खोई हुई जो उर्वरा शक्ति है वो जैविक कार्बन के लिए, यह जरूरी हो गया था कि आज हमने खेती बचाओ अभियान चला के इनके जो उद्देश्य दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा या हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी के द्वारा, तो वो इन चीजों को लागू करके और हम दोबारा से उसी तरह से खुशहाल खेती कर पाए।
1: क्योंकि अगर विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसान भाई अपने मिट्टी की जांच के आधार पर खेती कर रहे हैं, तो जो उर्वरकों का संतुलित उपयोग करेंगे ना, खेती की लागत भी कम होगी और मिट्टी की जरूरत है वो बढ़ेगी, फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही रासायनिक खादों की जो निर्भरता है वो घटेगी और खेती की उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहेगी।
0: बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि ये है हमारे लाभ किसानों के लिए, क्योंकि खाद का खर्च कम होना, अब मान लो 10-20 किला में जो भी फसल लगा रखी है, हमने मिट्टी पानी की जांच करा ली, वातावरण देख लिया उस हिसाब से और उसी से संबंधित हमने फसल लगा ली, जहां मान लो 20,000 का खर्चा होना था और 5,000 का खर्च हो रहा है उसमें, तो वो किसान भाई के लिए फायदेमंद हो गया, उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसके साथ साथ किसान भाइयों के लिए पीएम किसान योजना है, केसीसी कार्ड है, फसल बीमा योजना है, ये चीजें भी जो है अगर किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है तो उसके लिए किसान भाई ने नुकसान नहीं उठाना पड़े, क्योंकि हमारा देश जो है भारत देश वो कृषि प्रधान देश है। हाँ। और हमारी जो आजीविका है या हमारा जो वितरण आहरण वितरण है जो भी, वो सारा कृषि पर निर्भर है, तो इसलिए जो है ये योजना चलाई गई है, किसान क्रेडिट कार्ड है जैसे, वो किसानों के लिए बहुत ही आर्थिक लाभ का एक क्षेत्र है, जिसमें किसान भाइयों ने बहुत ही कम ब्याज दर पे उसके राशि उपलब्ध कराई जा सके है कराई जाती है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा जो और योजनाएं चलाई गई हैं, जो हमारे तकनीकी यंत्र हैं खेतों के लिए, ट्रैक्टर है या और जो मशीनरी है, उनके लिए भी किसानों को जो है इसमें छूट देके इनकी सहायता की जाती है।
1: तो ये नहीं, बहुत सी योजनाएं, कई बार देखा कि किसान भाई तो खूब जागरूक हैं, सारी योजनाओं का लाभ उठाए हैं, लेकिन कई किसान भाई ध्यान नहीं देते।
0: लेकिन आपने जिक्र करा था एक विविधीकरण का,
1: हाँ हाँ,
0: तो इसका भी बहुत महत्व है, एक जो किसान भाई का खर्च है वो बचाने के लिए, क्योंकि हम जिस तरह धान लगा रखे तो उसके बाद चने का मतलब बिजाई कर सका, गेहूं के बाद मूंग का, सरसों के बाद गेहूं का, सोयाबीन के बाद मसूर का, ये जो इस तरह की हम अगर पैदावार लेंगे ना, मैंने पहले भी जिक्र करा था कि दलहनी और तिलहनी फसलों का अगर हम इसके साथ पैदावार लेते रहेंगे तो उर्वरा शक्ति जमीन की वैसे ही बढ़ जाएगी, और जांच कराने के बाद तो हम कन्फर्म हो जाए इस चीज के लिए। तो इस तरह से हम जो खेत बचाओ अभियान है, इस तरह के तरीका ने अपना कर उसमें अपना योगदान दे सके हैं, और नई नई तकनीक का उपयोग करके हम अपनी जो आजीविका बढ़ा सके।
1: हाँ, क्योंकि फसल चक्र का एक ही मतलब है कि एक ही खेत में साल दर साल एक ही फसल उगाने के बजाय अलग अलग प्रकार की फसलें अदल बदल के बो दें, ताकि अपना जो मुनाफा है वो भी बढ़ जाए और हमारे पास अलग अलग तरह के अनाज भी हुए, तो उस तब हमने किसान भाइयों ने बहुत फायदा मिला।
0: और ईब जो सुविधावान अपने जो श्रोता है उनका भी फायदा करा दे।
1: हाँ, मनोरंजन जरूरी है,
0: तो भैया का करा दिया है मनोरंजन।

ज्ञान के घोड़े जोड़ चला अरे पाप पुण्य दो पहिए बना के बैठे रथ में दौड़ चला अहम ममता की दो जंग।

अस्थान किया रे महोशोग की दो चुरी बनाते पंच कर्म गति ज्ञान किया सात दाति और पांच सामग्री विषय रूप सामान किया सब रंग के वस्त्र पहन रजोगण अक्षय का धारण दान किया रंग के वस्त्र पहन रजोगण अक्षय का

बिना राग द्वेष के धनुष बाण कर हाथ लिए। ज्ञानवती सत्य बुद्धि को तज सोच विषय उत्पात लिए। रे महानिर्दयी करुर चित राजा कर पशुओं से घात लिए। महानिर्दयी जुलम है

0: भी बिकने लग रही है और 4-5 रुपए किलो हरा चारा बिकने लग रहा है।
1: हाँ।
0: लेकिन जब गांव में है आप अपने खेत में ये सारी चीजें हैं तो इस पर खर्चा नहीं आने लग रहा और अपन बढ़िया सुतरा घर का जो है घी दूध अपन मिल जाए है
1: हाँ,
0: और
1: कभी।
0: एक हमारा आमदनी का साधन भी है यो।
1: हाँ
0: क्योंकि जो छोटा कटड़वा कटड़ी है या बाछी है जिस तरह टाइम पे 2-3 साल के बाद जो है जब वो भी ब्याज है तो एक किसान की जो है अलग से जो है वो
1: इनकम हो
0: इनकम
1: जाए। हाँ
0: सोर्स हो जाए है और वो उनके साथ घूमते फिर दे जवान हो जाए है
1: पता भी
0: और
1: नहीं लगता।
0: पता भी नहीं चलता और
1: हाँ
0: अपन कोई विशेष खेचड़ा उनकी करने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: हाँ क्योंकि वो उनके साथ ही हो जाए है, कोई अलग था तो स्पेशल टाइम उनके लिए निकालना नहीं पड़ता। और जो जिस घर में कया करे ना नरेश भाई, जिस घर में दू है काली उसका रोज दिवाली,
0: रोज दिवाली
1: क्योंकि अब घी और दूध की कोई इतनी डिमांड है कि तसल्ली भी नहीं रह रही। गर्मी में
0: बिल्कुल
1: तो बिल्कुल टोया भी नहीं पाता, और अगर अपना घर में देना है तो उस बर की तो रीस ही नहीं, क्योंकि देखो इन दिन आप इतनी लस्सी पी वहां, और जरूरत भी है गर्मी में। चाहे अपना होगा तो एक आधा अड़ोसी पड़ोसी भी ले ले, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखो जो गर्मी का जो खाना है और पीना है, गर्मी में हमने खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ा है, अपना भी, अपने बूढ़े बुजुर्गों का भी, बच्चों का भी, और अपने पशुओं का भी, पक्षियों का भी।
0: सुविताबान जो बात कह रहे हैं ना वो तो बात सही है। अभी देना तो रहना चाहिए लेकिन इस टाइम में ना यू क्या करना बोले जो जेठ का महीना में तो भरे जोड़ सूख जाए पानी के
1: हाँ
0: तो जो पशु है जो दूध देने वाला अपना पशु है वो भी इस गर्मी के कारण जो है वो दूध तो सूख जाए तो
1: हाँ
0: उसने बचाए रखने खातर एक तो उसका गर्मी तय प्रबंध बनाए रखना पड़ेगा और आजकल जो है पशुओं के नीचे भी पंखे कूलर चले हैं बढ़िया
1: हाँ
0: नीचे गद्दे बिछाए जाए हैं तो उनकी देखभाल जब तक आप नहीं करांगे तो नू ना सोचो आप गिलास भर के सामने दूध का पी
1: नहीं,
0: लेना।
1: देखभाल तो करनी पड़ेगी। देखो भाई कर रहे भी हैं, अरे वो और ज्यादा भी कर रहे हैं। पहले कड़े पंखे कूलर रहा करते भी, ठंडी मतलब जाकी जंगले ही से बना दिया करते कि उनमें को आया करते, लेकिन ये
0: नहीं
1: पंखे कूलर के तला रखा। जैसे जैसे हम बदले हैं, हमने अपना जो तरीके तौर तरीके भी बदल लिए हैं।
0: नहीं दोनों चीज है भाई उसमें सविताबान जब पंखे कूलर नहीं थे तो पशुओं का आदमियों का सारा पेड़ पौधे थे
1: हाँ
0: आज पेड़ पौधे नहीं रहे तो
1: कोई
0: हमने
1: बात
0: फिर
1: नहीं,
0: पंखे कूलर की जरूरत पड़ रही
1: जरूरत
0: है
1: पड़ेगी।
0: तो किसान भाई भी हम आकाशवाणी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पर्यावरण दूषित होने से बचाना है पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग का आप जिक्र करने लग रहे हैं उससे बचाना है और कम से कम आप बिजली का प्रयोग करा उससे बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा खेतों में भी जो है डोल के सारे सारे पेड़ पौधे लगावे। पहले देखा कर दे के खेतों का मैं ना इतने पेड़ पौधे आया कर दे आदमी कसी कसोला का काम करके नू कहंदा चल शीशम की छाया में तूत की छाया में जाके बैठ के और थोड़ा सा आराम कर ले पानी पी ले आज खेत में वह दिखने नहीं लग रहे
1: हाँ
0: तो
1: नहीं
0: वो
1: दिखने
0: नहीं
1: लग रहे।
0: दिखेंगे तो फिर आपने देख पंखे कूलर चलाने पड़ेंगे वो वाह वाह कड़त आओगे जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो
1: ये इतना इसके तरफ तो भाई ध्यान देंगे, आगे जो बरसात का मौसम आएगा तो पूरे पेड़ पौधे लगाने हैं। और
0: सविताबान उरे लग भी देखे मन तो जिस तरह मारे थे लगा ले चाहे आपके लगा ले गामा में नोरे आया कर दे गितवाड़ आया कर दे जोड़ पर जाया कर दे तो जगह जगह पेड़ की लार सी आया कर दे और गांव वाले भी आपस में मिलजुल कनो के अगर दे आज जोड़ पर भी 50 पौधे लगा के आने हैं तो अपने आप कोई त्रिवेणी ले आंदा कोई बड़ ले आंदा कोई पीपल ले आंदा कोई नीम शीशम नू ले लिया कर उनके ऊपर लगाया कर दे और एक अपना अधिकार सा भी जमा लिया कर दे यो मन ने लगाया है हालांकि
1: हाँ
0: वो फल और छाया जो है सबने दे रहे हैं बराबर लेकिन एक वो अपना अधिकार से क्यों जमाया कर दे क्योंकि उसने लगाया था उसने वो सींचा कर दा तो उसमें भी क्या कर दे फलाना पेड़ तो उसने लगाया है और ये जो बड़ पीपल हैं जिस तरह ये 100-100 200-200 साल पुराने भी जो हैं अपनी जगह तक नहीं हिलते और अपनी छाया और फल इसके साथ साथ तो पशु जो पक्षियां का जो आश्रय स्थल भी ये
1: वो
0: बना
1: बना
0: है।
1: है। और इसी गर्मी में देखो अपने पशुओं का तो ध्यान रखा है, संतुलित आहार आपा तो लेवा ही, लेकिन पशुओं ना भी संतुलित आहार देना है। और देखो इन दिनों में इतनी गर्मी बढ़ रही है कि पक्षियों का भी हमने ध्यान रखना है,
0: चलो
1: उनके लिए
0: सविता
1: भी पानी के कसोरे हैं, और खाने का सुबह शाम अपना जरूर दाना डालना है।
0: बिल्कुल
1: नरेश भाई एक
0: सविता
1: मोटी सी बात है, देखिए इंसान पैसे कमावा है, लेकिन जो जीव और जंतु जानवर है ना, वो कभी पैसे नहीं कमाता, लेकिन भूखे पेट नहीं सोता, ये कुदरत की ही माया है।
0: बस ये बापा ने समय का ध्यान रखना पड़ेगा और घड़ी इशारा करने लाग रही और अपने सामने बैठे उद्घोषक जी भी इशारा करने लग रहे हैं कि किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होने लग रहा है और मिलांगे भैया ने मारे
1: हमारे
0: गांव
1: गांव में
0: कार्यक्रम में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम म्हारे गांव।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्वेताबन, मारे गांव कार्यक्रम में भैया का एक बार फिर से
8: स्वागत करा,
7: स्वागत करा है और सारे बन भैया ने
8: राम राम
7: राम राम। श्वेताबन, मारे गांव कार्यक्रम के तहत पहुंच तो गए आप गांव में, लेकिन देखो जो ये टेम है सही धूल भरी आंधी चलने का टेम हो रहा है।
8: हाँ।
7: और पूरा रेत उड़न लाग रहा है और बीच बीच में जो है मौसम बदलता भी रहा है, कदे खूब तेज गर्मी भी हो जाए है। और देखो बदलाव इतना आ गया मौसम के अंदर, दो चार दिन भी अगर 45-46-47 के लगभग तापमान पहुंच गया है तो तुरंत बादल बुदल आके आंधी तूफान होके जो है वो टेम्परेचर जो है अपना 40-42 पा जाए है।
8: और सुबह सुबह तो ठंडी हवाएं चले है,
7: लेकिन ये अपना ब्योत भी इतना रह रहा है, पहला गर्मी और सर्दी सहन भी नहीं
8: कर सकते। हाँ, क्योंकि अब की बार तो अपनी इज्जत सी भगवान ने बचाए रखी है।
7: ले उसका एक कारण और हो गया सविता बहन, एक तो हमने है ना, चाहे गांव है या शहर है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी हमने एसी का सहारा ले लिया।
8: हाँ।
7: मतलब एक लोगों का स्टेटस हो गया, सिंबल स्टेटस लगा लो इसने, चाहे कुछ भी कह लो, आगे नु पूछेंगे के बात एसी को नहीं के, अरे रुपये तारा बिना तो नहीं तो हम लगा जावा, ये नहीं देखने लग रहे आप एक एसी लगाने से कितना वातावरण गर्म करने लग रहे हो, उसके पीछे आपके कमरे में तो ठंडक होगी लेकिन उसके बाहर जो वो गैस फेंकने लग रहा है, जो हीट फेंकने लग रहा है।
8: हाँ।
7: वो कितना वातावरण गर्म करने लग रहा है, इस चीज को ध्यान दो। पहले सुविधापन अपन देखा था नोरा में जड़े डांगर बंधाया करते, गर्मी के दिनों में उनके बीच में खट गाल के और मच्छरदानी लपेट के सो जाया करते, पंखा लग को नया घरदार खूब बढ़िया सवेरे निखर के उठा करते।
8: हाँ।
7: लेकिन आज एसी कूलर का आगे सो के भी सवेरे नहीं से उठे हैं, दोनों बल्लट मार रखे हैं, है नु बांगे बांगे होकर उठेंगे, तो ये जो कल्चर है हमने खुद अपना खराब कर लिया शरीर का भी, और उस शरीर को तकलीफ ना दे इसलिए हमने अपने प्रकृति को भी खराब करना शुरू
8: कर रखा है।
7: तो हमने इन चीजों से बचना है, कोशिश करें शरीर में पसीना निकालने का प्रयास करें, जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो शरीर से बीमारी नहीं निकलेगी। और जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे एसी का में कूलर का में पंखे का आगे रहें, शरीर सबसे बढ़िया जो है वो शरीर है, अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तो हमने सारे सुख मिलेंगे, जिसका शरीर सुखी नहीं है ना कितनी धनवाया दौरे दे रही है उसका
8: कोई फायदा को नहीं ना कोई काम।
7: पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो धनवाया, तो धनवाया दूसरे नंबर पर आई है, पहला सुख है निरोगी काया।
8: हाँ।
7: जब तक हमारा शरीर निरोगा नहीं होगा ना, आजकल की जो सुविधा बात करा अपना टाइम में सवेरे 4 बजे उठ लिया कर दे।
8: हाँ।
7: और उठ कर सबसे पहला बाहर घूमने खातर जाया कर दे। चलो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक अभियान चलाया गया हर घर शौचालय, भाई गंदगी थी वो क्योंकि आबादी कम थी तो महसूस को नहीं आया करता, आज आबादी ज्यादा हो रही है तो गंदगी बढ़ गई, तो घर घर शौचालय हो गए, तो घर घर शौचालय तो हो गए, हमने उस टाइम उस शौचालय के लिए उठ के जाना अच्छा समझा कर दे, आज घर में शौचालय हुआ तो हमने वैसे भी खाली दिमाग जो है खेतों का नहीं घूमना, सवेरे सवेरे पगडंडी अपनाना हमने छोड़ दिया।
8: हाँ।
7: क्योंकि हम उठाए दिन दिन निकलने के बाद हैं और रात ना सोंदे को नहीं, हम बारह बारह दो दो बजे तक,
8: तो
7: हमने अपना जो सारा शेड्यूल है चाहे वो दिन का है या रात का है या खाने पीने का है, हमने खुद अपने आप को बीमार कर लिया है। आज हम इन चीजों को अगर दोबारा अपना ले हैं, चलो शौचालय हमारा घर है, फ्रेश होके ताजा होके पानी पी के और घूमने के लिए जब सवेरे सवेरे आधा घंटा भी आदमी पैदल टहल आवे, तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूं और आनंद जी भी सुनने लग रहे हैं, लेकिन यह गारंटी है किसी भाई का शुगर की बीमारी हो अगर वो सवेरे शाम आधा आधा घंटा घूम लेगा तो उसको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी।
8: हाँ, और एक बात और देखा नरेश भाई, पहले गांव में अपना स्वास्थ्य के यूं होया करते भी, वो इतने साल का अपना दादा ताऊ का
7: 100 साल तक
8: स्वस्थ है, उसने अपना जाड़ का उसका कीड़ा भी नहीं लग गया है, बीमार भी नहीं हुआ, लेकिन अब देखो गाँव में कितनी बीमारियां बढ़ रही है।
7: बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि हम जो अपना शरीर का ध्यान रखे उस शरीर के ध्यान के साथ मौसम की मौसमी जिसना आप फल सब्जी का वहां उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, बिना मौसमी फल सब्जी का प्रयोग ना करें। ईब गर्मी का टाइम है, जामुन का मौसम आओगा, तो जामुन जो है एक ऐसा फल है जो आपके पूरे जामुन का फल से पहले के जो आपने भी साग सब्जी शरीर में ले रखी है कोई भी विकार है, यहां तक शरीर में बाल भी खाया गया ना, तो उसने भी हजम करने की ताकत जामुन
8: में है।
7: अगर हम सीजनल कोई भी फल सब्जी खा रहे हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए टॉनिक है।
8: हाँ।
7: वो बीमारी से बचाता है,
8: सस्ते भी,
7: लेकिन आप कोल्ड स्टोर के हिस्से में इसे बढ़ गए कि आप जो सीजन आज गोभी का सीजन नहीं है, लेकिन आपने मंडी में गोभी
8: है, मटर है, सारी सब्जियां है,
7: तो हम मतलब सीजनल चीजें खावांगे और उनका सही तरीके से उपयोग करांगे। आनंद भाई, जो हम जामुन का जिक्र कर रहे हैं, जामुन का पहला तो गुद्दा खाओ, फिर बीज ने सुखा लो, उसके सूखने के बाद उसका चूर्ण बना लो, तो उसकी भी फांकी ले लो, वो भी जब आपके पास जामुन नहीं है, जामुन के सीजन खत्म होने के बाद भी अगर उसकी रोज एक चम्मच चूर्ण के ले रहे हो तो भी वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो हम प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है, फिर भी हम बनावटी तरीके में चल रहे हैं, कूलर की हवा ले रहे हैं बनावटी तरीके से, एसी की हवा ले रहे हैं बनावटी तरीके से, कोल्ड स्टोर के फल सब्जी निकाल निकाल के खाने लग रहे हैं, फ्रिज में से डायरेक्ट पानी की बोतल काट रहे हैं, ऊपर मुकर के पानी पीवा है, ये सब हमने खुद पाल ली बीमारी के लिए,
8: अपनी सुविधा के लिए पाल ली।
7: सुविधा नहीं है बस, उनने काम भी किमे को नहीं और जल्दी भी ज्यादा
8: दिखा है।
7: अब पूछ ले ना भाई, काम के है तो काम भी कुछ नहीं है।
8: हाँ।
7: लेकिन जल्दी इतना कि इतनी मद नहीं कर रहे कि गिलास लेकर उसको मैं पानी दिता के मुंह लगा के पी ले, चाहे ओक लगा के पी ले। अपने दादे देखे अपने सविता बन बार भीतर घूम का आया कर देने आंदे, पहला तो
8: करके पानी पिया
7: भीतर बढ़ दे तो जूते झाड़िया कर दे।
8: हाँ।
7: बारे जूते झाड़ के फिर भीतर बढ़िया कर दे, फिर लोटा पानी का मंगा दे, मुंह धो दे, कूड़ा कर दे, फिर ओक लगा के पानी पींदे, कदे उनका खांसी जुखाम का अपन जिक्र कौन सुनिया
8: नहीं सुना था।
7: आज आप के कर पसीना पसीना होकर आगे न आंदे फ्रीज खोले और बोतल ठाई और सीधी मुंह खोल के पी ली तो गर्म सर्द अपने होगी वे पड़ोसी।
8: आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का शुगर देखना मिल जाएगी आपने, छोटे छोटे बच्चों का एलर्जी देखना मिल जाएगी, छोटे छोटे बच्चों का जो रोग नहीं सुने हैं वो रोग देखना हमने मिलन लग रहे हैं, क्योंकि खान पान और जीवन शैली ऐसी बना दी हमने।
7: तो अपनी जीवन शैली ने और आगे बढ़ाओ, उस तक पहला भाइय का मनोरंजन करा दे।

पढ़ो।

0: सविता वाणी, ये तो भैया ने रागनी सुनी और बातचीत के साथ साथ आप चल रहे थे। अब प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आज जो कार्यक्रम है अपना, वो शैक्षिक सशक्तिकरण योजना है।
1: हाँ, ये एक कल्याणकारी योजना है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक व्यापक स्तर पर कल्याणकारी योजना है जो शिक्षा के अवसर को बढ़ावा तो देवे है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचावे है और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर यह कल्याणकारी योजना केंद्रित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों, मुस्लिम है, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, इनके लिए ये विशेष कार्यक्रम है। शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम में कई सारे बिंदु आए हैं, जैसे स्कूल शिक्षा की उपलब्धता है, अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों और गांवों में सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाओं के माध्यम से नए स्कूल स्थापित करना और बुनियादी ढांचा मजबूत करना। ICDS एक प्रोग्राम है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वंचित वर्ग के जो बच्चे और माताएं हैं उनके स्वास्थ्य जांच और मुफ्त विद्यालय शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो सविता बहन, ये जो शैक्षिक सशक्तिकरण नाम है, जो इससे अपन पता चले है कि शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रति हमारी सरकार कितनी जागरूक है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होना जरूरी है और उसके लिए RTE एक्ट के अनुसार कक्षा एक से अब तो बाल वाटिका से शुरू कर दिया है कि 8वीं तक के बच्चा निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने लग रहे हैं। उसको किसी भी प्रकार से घर से कोई भी चीज लेके आने की जरूरत नहीं है, उसका स्टेशनरी का भी है, बैग का भी है, वर्दी का भी है, किताबें भी हैं और दोपहर का खाना भी जो है स्कूल में ही दिया जा रहा है। तो ये शैक्षिक सशक्तिकरण तो है, लेकिन फिर भी जो अभिभावकों का जो है जागरूक होना जरूरी है कि वो प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 4.5 साल से ऊपर है, 1 अप्रैल को 5 साल से ऊपर है, वो स्कूल में जाके दाखिल जरूर कराएं और उससे पहले है तो आंगनवाड़ी में जाकर उसका नाम लिखवाएं।

0: ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके।
1: हाँ, क्योंकि और इसमें छात्रवृत्ति जो योजनाएं हैं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जैसे आधारित छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई ना छूटे। मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण है, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसों में विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशाला

0: और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से ऋण सहायता भी उपलब्ध करवाना है।
1: और एक भाइया का फिर मनोरंजन करवा दे हैं। सुनो भाई, ये रागनी
2: ठंडी

ਮਾਰੀ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਮਾਲੀ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਰੱਬ ਗਰੀਬੇ।

0: Bin ja dem Hand.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महारे गांव। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
2: परिक्रमा नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम परिक्रमा लेकर हाजिर है आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक कुमार। दोस्तों आज की परिक्रमा में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश। हिसार के गांव मुकलान में हरियाणा ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा के उद्घाटन अवसर पर अध्यक्ष श्री

0: सुमंत कुमार ने क्या कहा सुनिए आज के अंक में। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर क्या है ताजा जानकारी बताएंगे आपको। आकाशवाणी की एक नियमित श्रोता से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के अंक में। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की भी आपको देंगे जानकारी। तो आइए आपको लिए चलते हैं परिक्रमा के सफर पर। दोस्तों, देश निरंतर उन्नति की नई कहानी लिख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा,
1: साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। जो खबर आई है वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7 और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है।
0: दोस्तों, हरियाणा के गांव की उन्नति में हरियाणा ग्रामीण बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में हिसार के गांव मुकलान के बैंक की

0: नवीन शाखा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की हरियाणा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री सुमंत कुमार ने मंच से बोलते हुए कहा,
1: आज पूरे देश में 28 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, 28, हर स्टेट में एक है। आज से पहले 43 होते थे, 43, अभी गवर्नमेंट ने कुछ आरआरबी को मर्ज करके हर स्टेट में एक आरआरबी बना दी है, तो उसमें से हरियाणा ग्रामीण बैंक भी एक है एंड वो आरआरबी उस स्टेट के नाम से पहचाना जाता है। जैसे अगर हरियाणा में रीजनल रूरल बैंक है तो हरियाणा ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा, इसी तरीके से अगर पंजाब में है तो पंजाब ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। तो पूरी कंट्री में, पूरे देश में 28 जो हमारी स्टेट है, हर स्टेट में एक रीजनल रूरल बैंक है। उन 28 में से हरियाणा ग्रामीण बैंक की जो पोजीशन है बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। आप समझ सकते हो कि 28 में से 3 बैंक ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जिनका आईपीओ इस साल में आने वाला है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी हमारे हरियाणा ग्रामीण बैंक की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। हरियाणा का जो नाम है पूरी स्टेट में, आप समझ सकते हो कि 28 में से एक केरला बैंक को सिलेक्ट किया गया है, एक तमिलनाडु को सिलेक्ट किया गया है, एक हरियाणा को सिलेक्ट किया है। तो ये जो उपलब्धि है ये आप लोगों की मेहनत है जी, आप लोगों की, जो हमारे साथी लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनकी मेहनत है, आपका भरोसा है।
0: हरियाणा ग्रामीण बैंक मुकलांग शाखा की वरिष्ठ प्रबंधक कुमारी कविता ने ग्रामीणों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि बैंक की उन्नति में ग्रामीणों का महत्वपूर्ण योगदान है।
2: सर, हमारी मुकलांग शाखा 2012 में इस गांव में हमारे ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ था, रूरल ब्रांच है सर, और लगभग 14 सालों में जो है ना हमारी ब्रांच ने रेगुलर प्रोग्रेस ही की है। आज हमारा सर टोटल बिजनेस 80 करोड़ का है, जिसमें से हमारा 38 करोड़ डिपॉजिट है, 42 करोड़ का हम एडवांसेस कर रहे हैं, जिसमें सर हमारा एनपी ओनली 57 लाख है, जो कि ओनली 1.35% के प्रोस है, जो सीधा सीधा ये लगता है कि लोगों का हमारे साथ में क्या रिलेशनशिप है और हमारे साथ उनका विश्वास और जो प्यार है वो दिखाता है कि लोगों की कोई भी इंटेंशन यहाँ ऐसी नहीं है कि वो किसी भी अकाउंट को, लोन अकाउंट को अपने खराब करें। वो बस जो है किसी भी रीजन से, जो भी हमारा थोड़ा सा अमाउंट एनपीएम है वो उनका किसी ना किसी जेन्युइन रीजन से ही पेंडिंग है सर। और सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारी ये आज जो ब्रांच बनी है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे चेयरमैन सर के विजन के अकॉर्डिंग हमने तैयार करवाया है। हमारे चेयरमैन सर का जब से उन्होंने ज्वाइन किया उनका विजन एक ही रहा है कि हमारा ग्रामीण बैंक नाम तो जरूर है बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं वो हमारी किसी भी बाकी नेशनलाइज बैंकों से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हम किसी भी चीज में पीछे नहीं है। पहले हम सिर्फ केसीसी के ही लोन देते थे, आज कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो आप किसी भी दूसरे बैंक में जो आपको मिलती है और हम यहाँ नहीं दे रहे। चाहे आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरह से बात कर लो, चाहे आप रिटेल में कार लोन, एमएसएमई, बिजनेस लोन, किसी भी तरह के लोन की अगर हम बात करते हैं तो आज कोई भी ऐसा लोन नहीं है जो हमारा बैंक नहीं करता है। इसके लिए सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी शाखाओं का जो नवीनीकरण का काम शुरू करवाया है, जिसकी वजह से लोगों को हम पहले की बजाय बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, उसके लिए सर थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, जिला बार एसोसिएशन हिसार के चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। इस विषय पर पूरी जानकारी दे रहे हैं एडहॉक कमेटी सदस्य एडवोकेट जे एस मल्ली।
3: 22/5/2026 को जो मीटिंग हुई थी जनरल हाउस की, उसके अंदर मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन का था, इलेक्शन का नहीं था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती वहां ये मुद्दा ले आके और उसको इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया 12/6 के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एटलीस्ट 30 डेज का टाइम देना होता है इलेक्शन के लिए, कम से कम अनाउंस करने के बाद 30 डेज के बाद, और हॉलीडेज के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं 12/6 को, जबकि सिविल का वर्क बंद है, आधे वकील हमारे आउट ऑफ स्टेशन जा चुके हैं, तो पूरी वोटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने जो 3 तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो लेटर आया था, उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि देर विल बी नो इलेक्शन और आप लोग

0: तीन दिन के अंदर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और बाकी और जो मेंबर बने हुए हैं इलेक्शन कमेटी के वो अपना रिप्लाई फाइल करो। तो उन्होंने उसके मीटिंग रखी थी, उसके अंदर 5-7 वकीलों के साथ मिसबिहेव किया गया, जो अपोजिट बोलना चाहते थे उनको बोलने नहीं दिया, उनसे माइक छीन लिया, उनको धक्के मार के बाहर से बाहर कर दिया। हमारे एक एडवोकेट है रजत कल्सन, उसने भी यही बात कही थी कि बार काउंसिल से ही हमारे आगे से पहले से इलेक्शन होते आ रहे हैं और अब भी उसी के मुताबिक होने चाहिए। और ये लेटर बार काउंसिल में इंडिया का है, लेकिन उसको वहां कुछ यंग लड़कों ने घेर के उसके साथ हाथापाई की, उसको थप्पड़ भी मारा और उस मतलब जो भी आदमी बोलना चाहता था उसको बोलने नहीं दिया गया। तो ये इलेक्शन वो बार काउंसिल के रूल के मुताबिक नहीं हो रहा। बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी लेटर भेज चुकी है इलेक्शन मत करवाओ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी भेज चुकी है इलेक्शन मत करवाओ। तो हम इस इलेक्शन में जो एड हॉक कमेटी है वो इस इलेक्शन का साथ नहीं दे रही, ना हमारी सहमति है इसमें, वो अपने तौर पे करवाएंगे, उससे हमें कोई तल्लुक नहीं है। ये भी हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस इलेक्शन को इनवैलिड इलेक्शन डिक्लेयर करके इनको आगे नोटिस भी इश्यू कर सकती है, लेकिन वो बात का मैटर है। सवाल ये है कि इन्होंने जो लिस्ट बनाई है एडवोकेट्स की 2700 कुछ की, उसके अंदर इन्होंने बरवाड़ा के भी कुछ करीबन 209 एडवोकेट्स को शामिल किया है, जबकि वो अपनी बार अलग बना चुके हैं और उनका 27 फरवरी 2026 को इलेक्शन भी हो चुका है और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह बन चुके हैं वहां पे। तो वो मेंबर यहाँ वोट नहीं कर सकते क्योंकि बार काउंसिल का ये है वन बार वन वोट। तो ये जबरदस्ती उनको भी ऐड करके इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ये इनवैलिड इलेक्शन तो डिक्लेयर होगा। बार काउंसिल नए सिरे से अपने रूल बनाएगी, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएगी। ये इलेक्शन बार की सहमति से बहुत ज्यादा, इसमें बार के मेंबर सहमत नहीं है।
1: दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं आकाशवाणी के एक ऐसी श्रोता से जो बचपन से ही आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रही हैं। रेडियो के प्रति जुनून इतना रहा है कि आज भी अपने देश के तमाम केंद्र के कार्यक्रम सुन लेती हैं। आप हैं प्रतापगढ़। दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं आकाशवाणी की एक ऐसी नियमित श्रोता से जो बचपन से ही आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रही हैं। रेडियो के प्रति जुनून इतना रहा है कि आज भी आप देश के तमाम केंद्रों के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। आप हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की मूल निवासी और वर्तमान में राजधानी लखनऊ में रह रही श्रीमती विनीता।
2: सर मैं रेडियो से बहुत दिनों से, मेरा समझ लीजिए बचपन से मैं आज तक रेडियो सुनती आ रही हूँ और मुझे बहुत शौक है रेडियो सुनना, क्योंकि रेडियो जो होता है ना अकेलेपन का साथी होता है सुनने में, मतलब कि इसके जो होते हैं ना नॉलेज, इससे ज्यादातर नॉलेज मैं बचपन से सुन रही हूँ। करीब हो गया मैं जब 8-9 से पढ़ रही हूँ तब से मैं आज तक सुन रही हूँ, मुझे इतना तक याद है।
1: तो परिवार में कोई सुनता था उसको देख करके आपको लगा कि हमें भी सुनना चाहिए?
2: सर मेरे परिवार में सारे लोग मेरे भाई हैं और मेरे जो पिताजी थे ना वो बहुत शौकीन थे रेडियो के, उनके पास रेडियो हमेशा लगा रहता था
1: जी,
2: उसी के थ्रू हम लोग भी आए, मतलब कि सुनने की आदत हो गई कि हाँ रेडियो से क्या क्या मतलब जानकारी मिलती है, कैसे क्या होता है।
1: हाँ।
2: अच्छा लगता था।
1: तो आपके...
2: और मेरा भाई जो है एक हिसार में रहता है ना, वो भाई मेरा हमेशा मेरे पिताजी को रेडियो हमेशा ला के देता था सुनने के लिए।
1: अच्छा
2: जी सर।
1: तो पहले रेडियो सेट पे आप लोग सुनते थे तो उसमें हाँ। उसमें सेल लगता था है ना?
2: जी जी।
1: तो वो जो है कभी ऐसा भी हुआ है कि रेडियो सुनने के लिए डांट पड़ी हो?
2: हाँ नहीं हाँ, जिस समय मैं पढ़ रही थी तो हाँ। मैं सर आपको एक खास बात बताऊं, जब मैं पढ़ती थी सुबह जैसे एग्जाम हो या कुछ भी
1: हाँ।
2: तो सुबह आते थे जो भक्ति गाने तो मैं लगा के पढ़ती थी, तो सब लोग मेरे घर में ही बोलते कि तुम पढ़ाई करते हो या रेडियो सुनते हो तो मैं यही कहती थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरा रेडियो पर भी थोड़ा बहुत ध्यान हाँ। रहता, पढ़ाई तो मुझे अच्छा लगता है बस और कुछ नहीं।
1: बिल्कुल रेडियो जो है वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से
2: हाँ, और मैं 6 बजे से ओपन होता था रेडियो का
1: हाँ।
2: तो मैं तब से जब तक मैं रहती थी स्कूल नहीं तब तक मैं लगाई रहती थी, टाइम मिलता था तो मैं सुनती रहती थी, अच्छा लगता था
1: हाँ। हाँ, मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी जानकारियां आपको मिलती रहती है ना।
2: जी सर, टाइमिंग का भी पता रहता था इस टाइम पे वे हमको मतलब कहाँ से क्या मतलब टाइमिंग को भी पता चलता था उससे।
1: बिल्कुल, समय के अनुसार आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों को पेश करता है तो हमें टाइम का भी पता चलता रहता है कि अब इतने बजे हैं, और बीच बीच में हम आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से बताते भी हैं कि इस वक्त दिन के इतने बजे हैं, शाम के इतने बजे हैं। तो ऐसे लोग अपनी घड़ियों को भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों से मिलाते रहे हैं।
2: जी सर। हाँ
1: तो विनीता जी, ये भी बताएं कि आप क्या करती हैं और परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके।
2: जी सर, मेरे परिवार में तो यहाँ ससुराल में मैं इस समय लखनऊ में अकेले रहती हूँ।
1: हाँ।
2: और मेरी फैमिली जो है दिल्ली में रहती है। मैं तीन यहाँ पर तीन भाई हैं और मायके मेरे चार भाई हैं।
1: अच्छा
2: जी, मैं अपने भाइयों का नाम जरूर लूंगी क्योंकि हाँ। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूँ।
1: जी बिल्कुल बताएं।
2: जी, मेरा बड़ा भाई है गांव में रहते हैं और एक भाई है यहाँ शाहजहांपुर में रहते हैं, छोटा उनसे ब्रेन नाम है। और एक भाई मेरा रहता है हिसार में, जिसके द्वारा मैं आपका कार्यक्रम अभी इस समय कुछ ज्यादा ही सुनने लगी हूँ।
1: बिल्कुल,
2: उनका नाम सुरेश कुमार है, वो भी मतलब मजदूरी काम करते हैं, बहुत अच्छे भाई है मेरे।
1: सबसे बड़े वाले भाई साहब का नाम नहीं बताया आपने।
2: हाँ, उनका बड़े भाई का नाम नहीं लेते ना, इसलिए थोड़ा
1: अच्छा नहीं, फिर भी लेते नहीं हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से।
2: हाँ, राजेश नाम है मेरे बड़े भाई का नाम, और
1: वो खेती करते हैं।
2: तीन भाभी हैं।
1: बड़े भाई साहब खेती करते हैं।
2: हाँ, खेती करते हैं और अपना एक साधन है उससे थोड़ा मतलब अपना निकल आता है रोजगार।
1: तो विनीता जी, ये बताए कि आप लखनऊ में रहती हैं।
2: जी सर।
1: और आप हाउस वाइफ हैं।
2: जी।
1: आपके हस्बैंड क्या करते हैं?
2: वो ये ट्रांसपोर्ट नगर में काम करते हैं।
1: अच्छा, तो इस इतने बड़े शहर में रहते हुए कभी गांव की याद आती है आपको?
2: बहुत याद आती है, तो सर मैं रेडियो लगा लेती हूँ क्योंकि रेडियो में जो यादें होती है ना पुरानी, वो रेडियो के द्वारा मतलब मिल जाता है।
1: बिल्कुल, उन यादों को जो है आप महसूस कर पाती हैं आकाशवाणी के गीतों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा, है ना?
2: जी सर।
1: तो विनीता जी, अब तमाम सुनने वाले श्रोता कार्यक्रम परिक्रमा में आपको और हमें सुन पा रहे हैं। आप बहुत ही खूबसूरत बातचीत कर रही हैं, बता रही हैं आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने बारे में, थोड़ा सा अपने गांव के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं, कैसा गांव है आपका?
2: सर मेरा गांव बहुत मतलब अच्छा गांव है, मतलब कि गांव जैसा गांव में फील होना चाहिए ना, एकदम देसी, हर चीज शुद्ध हवा हो गया,
1: हरा भरा, और
2: हरा भरा है
1: वहाँ पर,
2: कि शहरों के जैसा मतलब कि शुद्ध वातावरण पूरा है।
1: हाँ।
2: और वहाँ की खास बात यह है कि मेरे यहाँ अगर कोई दूर का मेहमान गांव में जो भी हो, मेरा गांव की एक खासियत है
1: जी,
2: कि मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं मेरे गांव में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात
2: है। गांव की मुझे बहुत मतलब गांव की इतना मैं क्या बोलता, मेरे पास सब नहीं है, गांव से कुछ शहर में जो कुछ मिलता है वो गांव में मिल जाता है।
1: बिल्कुल, आजकल तो गांव भी शहरों की तर्ज पर बदल गए, सभी सुविधाएं गांव में भी हैं, लेकिन
2: सुविधाएं हैं लेकिन गांव जो होता है ना गांव ही होता है सर,
1: उनकी शुद्धता, उनकी वायु, उनकी हवा की शुद्धता, वो आपको शहर में नहीं मिल पाती है।
2: हाँ, वही चीज सर।
1: तो विनीता जी, आज भी आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनती हैं और आज के जो युवा साथी हैं, जो नए बच्चे हैं, वो भी रेडियो सुने, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं सर ये बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए रेडियो सुने और इससे रेडियो में जो होती है ना नॉलेज, जानकारियां दी जाती है जो, वो जानकारी बहुत अच्छी होती है। हमें ये कहें कि जानकारियां जरूर रेडियो पे, जब आपको टाइम मिले तो रेडियो जरूर सुने।
1: बिल्कुल,
2: यानी काम के साथ साथ आप रेडियो भी सुनेंगे तो आपको जानकारियां मिलेंगी, मनोरंजन भी मिलेगा, सही साधन है रेडियो के साथ साथ।
1: तो विनीता जी, आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं।
2: जी सर।
1: और जगह जगह लिखा होता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में।
2: आप लखनऊ में हैं जी सर।
1: लखनऊ कैसा लगा आपको?
2: अच्छा लगा लखनऊ सर, मैं पहले दिल्ली में रहती थी, मेरे हस्बैंड का काम था यहाँ, तो मैं यहाँ पर अब 3 साल से रह रही हूँ, तो यहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है।
1: लखनऊ भी एक बड़ा विकसित और बड़ा शहर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
2: हाँ सर। और पहले भी सर मैं राजधानी में ही रहती थी और अभी मैं राजधानी,
1: आप राजधानी में ही रह रही, पहले आप देश की राजधानी में थी, अब आप,
2: अब मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहती हूँ।
1: तो विनीता जी, बचपन से आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रही हैं और उस जमाने से लेके आज तक आप रेडियो से जुड़ी हुई हैं, पहले के दौर में और आज में कितना बदल गया रेडियो बताएं?
2: जी सर, बदल गया सर, कार्यक्रम में तो बदलाव तो होता ही रहता है, क्योंकि जो श्रोता होते हैं ना वो बदलाव मांगते हैं, तो उसके हिसाब से चुनी तो हुई है। लेकिन हाँ, रेडियो पहले रेडियो जो था हम सुन रहे, अब मोबाइल के थ्रू द्वारा सुन रहे हैं, ये चीज बदलाव हुआ है।
3: ये
2: कहीं भी
3: तकनीक,
2: रहेंगे तो मतलब हम कहीं भी सुन सकते हैं रेडियो मोबाइल
3: हाँ, तकनीकी के
2: के
3: साथ साथ
2: द्वारा।
3: रेडियो भी बदला है। आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने
2: हाँ
3: में,
2: जी
3: आप वहाँ
2: सर,
3: आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन सकती हैं। तो
2: जी सर,
3: अभिनीता जी, आखिर में तमाम जो सुनने वाले श्रोता हैं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपको और हमें सुन पा रहे हैं, तमाम सुनने
2: मैं
3: वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप?
2: सर ये बोलूंगी कि आप मतलब रेडियो से जुड़े रहिए और
3: जी
2: अच्छी से जानकारी लीजिए, और कहते नहीं है कि मन को शांति मिलती है, कभी अगर अकेला हो कहीं हो तो रेडियो आपका साथी है।
3: रेडियो आपका साथी, बिल्कुल।
2: मेरा साथी रेडियो ही था, मैं इसलिए जैसा मैं जब फील हुआ मैं वैसे मैं सभी श्रोता को बोलता हूँ कि रेडियो जरूर सुनिए, जब भी आपको टाइम मिले अच्छा लगे, और
3: जी
2: अच्छा लगेगा रेडियो सुनने, क्योंकि रेडियो जो है पुराना अपना सर, मोबाइल तो आज के जमाने के दौर पर आया है आज,
3: बिल्कुल
2: लेकिन रेडियो जो है अपना पुराना है। जी
3: बिल्कुल है। इसको सुनना एक बार जो शुरू करता है, फिर वो उसकी आदत हो जाती है और फिर वो रेडियो के
2: सर,
3: बगैर नहीं रह सकता है।
2: जी सर, जी सर। अब मैं अभी भी फिलहाल में जब मैं अभी जब मैं यूट्यूब पे मैं काम नहीं कर रही थी तो मैं रेडियो ही सुनती थी 24 घंटे,
3: हाँ
2: जैसे सखी सहेली हो गए, आप मन चाहे गीत पहले तो आता था, अब तो वो नहीं आता है,
3: जी
2: और हेलो प्रमा पिटारा में कार्यक्रम के नाम तो मैं गिना सकती हूँ सर, पर अभी टाइम नहीं है, टाइम का भी थोड़ा ध्यान
3: बिल्कुल
2: देना है।
3: बिल्कुल। तो विनीता जी, आपने आकाशवाणी के कार्यक्रम परिक्रमा में
2: जी
3: हमसे
2: सर,
3: बातचीत की और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने जीवन को रेखांकित किया। आपने बताया कि कैसे कैसे आकाशवाणी या रेडियो आपका साथी बना और आज भी वो रिश्ता, वो मोहब्बत आकाशवाणी के साथ आज भी आपकी है। तो इतनी खूबसूरत बातचीत करने के लिए विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सर मैं अपने हस्बैंड का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड यही लिए सब कुछ है, सारे सबका नाम ले ली पर हस्बैंड और अपने बच्चे का नाम नहीं
3: हाँ
2: लिए।
3: हाँ जरूर लीजिए, बिल्कुल।
2: सर मेरे हस्बैंड है अमित कुमार, वो बहुत अच्छे हैं और
3: हाँ
2: मुझे मतलब मेरा हर चीज में साथ देते हैं, और मेरे बेटा है अयांश
3: हाँ।
2: और अभी KG पढ़ता है।
3: अच्छा, आजकल तो छुट्टियां हैं, KG में तो पढ़ रहे हैं
2: हाँ
3: और
2: तो इस समय मैं गांव जाऊंगी ना, तो मैं गांव वालों के लिए अपने और सारे फ्रेंड के लिए और
3: हाँ
2: अपने भाइयों के लिए मैं उनके लिए गाना चूजती हूँ।
3: हाँ
2: तो
3: बताइए कौन सा गीत सुनवा
2: भी
3: रहे
2: मैं
3: हैं।
2: पुराने गाने सुनती हूँ, ज्यादा नए गाने मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है,
3: जी
2: लेकिन
3: बताइए
2: अब आते हैं तो सुनना पड़ता है कभी कभी, लेकिन
3: बताइए
2: मैं
3: विनीता जी,
2: पुराने गाने बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद
3: बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: है। जी सर मैं गाने के बोल बता रही हूँ, साथिया नहीं जाना जीना लगे।
3: ठीक है विनीता जी, आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम परिक्रमा में आपने बहुत ही खूबसूरत बातचीत की और हम चाहेंगे किसी तरह से आकाशवाणी के कार्यक्रम आप सुनती रहें।
2: जी
3: बातचीत
2: जी
3: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत।

0: तो दोस्तों, ये थी आज की परिक्रमा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय तमाम गतिविधियों को पिरो कर हाजिर होंगे कार्यक्रम परिक्रमा में। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार को दें इजाजत। नमस्कार। परिक्रमा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिक्रमा। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कार्यक्रम खुला आकाश में आइए सुनते हैं संगीत एक फिल्म से, और आज की फिल्म है अभिमान।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री

0: शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनान ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पंचायत स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी

उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमत

0: परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल

0: 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

फिल्म का नाम था घर। लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने उसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए प्रोग्राम में अगली पेशकश।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने, फिल्म का नाम था, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए,

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से स्वतः आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमति फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सुनील चौधरी ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कलकत्ते से गाना सुन लो, उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोभा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोभा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में, कभी उस पग में,

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

साल 1919 को शिमला में जन्म हुआ था, अपनी कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में, जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण, यानी जो कार्यक्रम आपने सुना था कल, यानी 5 जून को शाम 5 बजे। आइए सुनते हैं उस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: कार्यक्रम हेलो हिसार में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आज के दिन यदि हर एक इंसान इस धरती पर हर एक इंसान सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेवारी समझ ले तो शायद हम कुछ सालों के अंदर ही इस धरती का, इस पृथ्वी ग्रह का कायाकल्प कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने हिस्से का सिर्फ एक पेड़ लगाइए और जो भी आपके संपर्क में है, आपके परिवार में है, उन्हें समझाइए कि उन्हें कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए इस जिंदगी में। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही सालों में हम इस धरती को वैसा ही हरा भरा कर देंगे जैसा कि ये ईश्वर ने हमें दी थी। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हेलो हिसार। देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो हिसार।
1: सर, मैं सुखदेव कुमार प्रजापति अबोर जिला फाजिलका पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: स्वागत है आपका सुखदेव जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी बताइए कुछ अपने बारे में।
1: सर, मैं सिलाई का काम करता हूँ जी।
0: क्या सीते हैं?
1: सर्दियों में तो कोट की कटिंग करता हूँ जी।
0: अच्छा,
1: और गर्मियों में कुर्ते पजामे कटिंग का काम है जी मेरा।
0: काफी टेक्निकल काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: सर, आज मेरे को गीत सुना दीजिए।

0: हेलो हिसार,
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है भैया, अच्छा है। आज
0: जी बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: हम इस सिलसिला से सुनवा देंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: ठीक है, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिला का।

0: हेलो हिसार।
1: सर जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहे हैं।
0: जगदीश जी, स्वागत है आपका। तो
1: आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं सर।
0: पालमपुर में कैसा मौसम कर रखा है आपने आजकल?
1: पालमपुर में तो बहुत ही खुशगवार मौसम चल रहा है सर।
0: क्या बात है,
1: आनंद ही आनंद है।
0: ये जो आपने बोला ना, बहुत ही खुशगवार, इसी से ठंडक आ गई है वहां की थोड़ी सी हम तक।
1: ठंड कैसी है कि पंखा तो अभी चलाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े से मोटे कपड़ों की भी जरूरत पड़ती है।
0: यहाँ देखिए, हम तो पिछले 2 महीने से एसी की हवा में जी रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि पंखा चलाने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल सर, कभी पंखा थोड़ा बहुत कभी चलाना पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो पंखे की जरूरत पड़ती नहीं है।
0: तो जब भी मौका मिले थोड़ी ठंडक भेज दिया कीजिए यहाँ पर।
1: बिल्कुल, पूरी पूरी कोशिश
0: बताइए,
1: करेंगे सर।
0: क्या सुनाऊं आपको?
1: सर जी, आज फिल्म है जब जाज किसी की आती है,
0: जी
1: महेंद्र कपूर जी का गाया, बहुत ही सुमधुर सा गीत है, तो उसके बोल मैं थोड़ा सा तरन में बताना चाहूंगा।
0: जी प्लीज।
1: अरे ओ शोख कलियो मुस्कुरा देना, वो जब आए सुनो फूलो महक अपनी लुटा देना, वो जब आए।

0: हेलो हिसार,
1: राम हीरा वाली फाजिलका पंजाब से नीमे श्रोता सुभाष गुजारा। बढ़िया
0: कैसे हैं? सुभाष गुजारा जी,
1: सर जी, बढ़िया। और हिसार के प्रोग्राम तो इन दिनों में पूरे छाए हुए हैं जी, और श्रोता गण भी रात की सभा में जो व्हाट्सएप पर प्रोग्राम चल रहे हैं वो हमारी समझ लो मन पसंद और जरूरत के हिसाब से चलाए हैं।
0: बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको पसंद आ रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जो कार्यक्रम
1: बिल्कुल
0: करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छे अच्छे जैसे मंगलवार को ई फरमाइश सुनते हैं और व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने हुआ, हेलो ये इशार हुआ, और खेती से संबंधित प्रोग्राम हुए, युवानी में हुए, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम जी, बड़े दूर दूर से श्रोताओं तो जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बेहद शुक्रिया आपका। बताइए, आज क्या सुनेंगे?
1: सर जी, पहले मैं नाम लेता हूँ, मेरे साथ मेरी घरवाली बिमला देवी, बच्चे हिंदू वाला पार्वी देवी, लड़का हिमांशु, सरवण रेणुवा जी भी साथ है।
0: जी,
1: आज मेरे को सुनना था प्रदेश फिल्म का गीत, सुन
0: गाने के बोल बताइएगा।
1: गाने के बोल है जी, नहीं होना था हो गया है मुझे प्यार।
0: ठीक है सुभाष जी, आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए फिल्म परदेश का ये गाना।

0: हेलो हिसार,
1: मैं जयवीर प्रतापत बोलूँ जी, गाँव थाना।
0: कैसे हैं जयवीर जी?
1: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाओ जी भाई साहब।
0: बिल्कुल ठीक हैं जी। क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में।
1: भाई साहब, हम तो अपना आकाशवाणी साथ सुनते रहा और मस्त मरा।
0: बहुत बढ़िया, इस तो बढ़िया, और के उसका है जी,
1: आकाशवाणी परिवार सब ठीक ठाक भाई
0: सब
1: साहब?
0: आनंद मंगल है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज वीर दुर्गादास फिल्म का नाम है, गाने के बोले थाने काजलियो बना लू, थाने काजलियो बना लू, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में जी। हाँ
0: ठीक है जयवीर जी, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: हेलो भाई साहब
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन तो बहुत ही पवित्र नगरी है, कुछ बताइए उज्जैन के बारे में।
1: जी बिल्कुल बताओ, बाबा महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, साथ में शिप्रा नदी के किनारे आपको मंगलनाथ के मंदिर मिलेंगे, भोले बाबा के साथ में हर सिद्धि माँ का मंदिर बना हुआ है। इस साइड में माँ हर सिद्धि का मंदिर है, उस साइड में महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद में आपको महाकालेश्वर बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं और माँ हर सिद्धि माँ के भी दर्शन हो जाते हैं। इसे मतलब आपको बताऊं सर, बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पे।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सौभाग्य है आपके कि आप इतनी सुंदर और पवित्र नगरी में रहते हैं। बताइए।
1: सर देखिए, आपको बताऊं कि अभी 2028 में महाकालेश्वर बाबा के दरबार में सिंहस्थ का मेला लगाया जाएगा ना,
0: जी
1: तो उसके लिए अभी से मतलब काफी तैयारियां कर दी गई, जैसे कि रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन
0: हाँ
1: पे पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, इसके अलावा एरोप्लेन से आने के लिए भी मतलब यात्रियों के लिए सुविधा कर दी गई है यहाँ
0: जी हाँ,
1: पे।
0: इस बार कुंभ जो है वो उज्जैन में होने वाला है।
1: जी हाँ, 2028 में महाकुंभ लगेगा अभी उज्जैन में।
0: जी, तो बताइए प्रेम जी, कौन सा गीत सुनाऊँ आपको मैं?
1: जी सर, मुझे महाकालेश्वर बाबा के उपलक्ष्य में आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी भक्ति रचना छुनवा दीजिएगा जो मतलब भोले बाबा पर फिल्माई गई हो।

0: हेलो हिसार
1: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ सर।
0: कैसे हैं सर आप?
1: बहुत अच्छी तरह से आपकी दुआ ईश्वर कृपा से।
0: और बताइए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है आजकल?
1: इस समय खेती में मूंग की कटाई शुरू हो गई है, मेरे यहाँ मूंग की फसल की कटाई हो रही है अभी, और मौसम स्वच्छ है आज बिल्कुल।
0: ऐसा माना जाता है जैसे जो हरियाणा पंजाब में कि एमपी का गेहूं एमपी की मूंग बहुत अच्छी होती है, क्या खास करते हैं आप मध्य प्रदेश में अपनी फसलों को बोने के लिए या उनकी अच्छी पैदावार के लिए?
1: सर जी, आकाशवाणी से जानकारी मिलती है, उसी अनुसार हम काम करते हैं। कृषक हम खेतों में जैसे निराई गुड़ाई करते हैं, जैविक विधि से अनुवाते रासायनिक खादों का कम प्रयोग करते हैं, और सही समय पे पानी देते हैं, प्रमाणित बीज लाते, मिट्टी परीक्षण भी कराते हैं।
0: बहुत बढ़िया। क्या आप जानते हैं ये बात कि हरियाणा और पंजाब में एमपी की गेहूं और एमपी की मूंग का बहुत बोलबाला है, क्या मालूम है आपको ये बात?
1: नहीं सर, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा पंजाब भी तो गेहूं में बहुत आगे, पूरे देश में सबसे आगे है।
0: नहीं पता नहीं क्या बात है, लेकिन यहां पर हरियाणा पंजाब में जो एमपी की गेहूं है उसकी बहुत मांग रहती है और वो काफी महंगी बिकती है यहां पर।
1: हाँ वो सर, गेहूं वेराइटी अलग है, सर्वती गेहूं पे विदिशा होशंगाबाद साइड में होता है, उसकी
0: तो
1: कीमत दुगनी होती है। सर
0: बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: सबसे पहले सभी श्रोताओं को, आपको आकाशवाणी परिवार को पर्यावरण दिवस की बधाई, और फिल्म का नाम है हमराज।
0: जी गाने केवल बताइएगा।
1: नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है, आपको सुनवा रहे हैं हरिविलास जी, फिल्म हमराज का ये गाना।

0: हेलो हिसार।
1: आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बंधु।
0: कैसे हैं आप?
1: अरे मस्त हूँ, आनंद में हूँ कि मंगल कामना और प्रभु के छत्र छाया में जीवन यापन सुचारू रूप से चल रहा है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं तो अभी रिटायर हूँ,
0: अच्छा
1: मेरी
0: अच्छा
1: उम्र 84 इज रनिंग नाउ, 84 साल चालू है।
0: अरे क्या
1: मगर
0: बात है।
1: बचपन से थोड़ा सा संगीत और गीतों का सुनना ये मेरा हॉबी है और आज तक वो मुकर्र रहे भाई साहब।
0: तो आकाशवाणी हिसार कैसे सुनते हैं आप?
1: ये तो मैं 1952 से रेडियो सिलोन पे जब बिना का गीतमाला आता था
0: जी
1: तब से मैं जुड़ा हूँ। मगर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने विविध भारती की नरेंद्र शर्मा जी के निर्देशन पर स्थापना की और तब से 1957 के बाद विविध भारती पर फिल्मी गीतों का प्रसारण चालू हुआ और मैं विविध आकाशवाणी केंद्रों से संवाद कर अपना गीत और अपने विचारों का आदान प्रदान करता हूँ भैया जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज कार्यक्रम हेलो हिसार में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिन हमने मनाया है।
0: जी
1: आज हमारे देश में पेड़ों की कटाई और जो एक नदी तालाब पहाड़ों का जो उसके ऊपर उत्खनन हो रहा है उससे पर्यावरण बिगड़ रहा है,
0: बेशक
1: ये चीजें हमें रोकना चाहिए और जिससे प्रदूषण भी कम हो सकता है। विषय को देखते हुए

0: ना सफर और ये मौसम हसी,
1: फिल्म
0: ये
1: मधुमती,
0: गीत सुनना चाहूंगा बंधु।
1: फिल्म मधुमति से।
0: हाँ, मधुमति दिलीप कुमार जी और वैजयंती माला जी के ऊपर ये फिल्म निर्मित की गई थी, बचपन में देखा था, तो ये गीत सुनाने का अनुरोध करना चाहूंगा।
1: सुनिएगा आपकी पसंद पर फिल्म मधुमति का ये गाना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद साहब।

0: तो दोस्तों ये था कार्यक्रम हेलो हिसार का इस हफ्ते का पहला भाग। दूसरे भाग के साथ आपको फिर मिलूंगा रविवार शाम 5 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो हिसार।
2: हेलो हिसार।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will be remembered as a great scientist said La Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
5: भामाशाह।
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?

0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
1: कार्यक्रम एक शख्सियत
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: किंतु पुराना अनुपम।
1: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
0: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
1: हर बुधवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे। अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों

0: पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Subhendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.

0: operation.
1: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chandigarh area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
2: FM and 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष भाग 6। यह प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
3: To women-led development, participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonam Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. Iske antargat aaj suniye Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Tashak. इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
4: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aapse jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aapse discussion karna chahenge, chahe wo Pradhanmantri Jandhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखते हैं आप इनके महत्व को?
5: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है
6: जी।
5: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
6: जी,
5: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
6: जी।
5: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए
6: जी,
5: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे। लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स। तो वो काम भी हो
6: जी
5: जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है, और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो ये सशक्तिकरण मात्र में भी है जी, ये आजीविका के मामले हैं।
4: यस जी अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन।

0: At women as a segment that can drive the economy of the country. Now that entire policy focus has shifted. Yeah. And like you said, that women have been brought into the financial mainstream of the country. And the first big step that helped lay down the landscape for that was the Jan Dhan accounts. Now this sounds very simple. It sounds very mundane, but it's a very, very big, very consequential reform. Mm-hmm. Under the Jan Dhan accounts, the bank accounts that were opened, zero balance accounts, mm-hmm. majority of the accounts are owned by women. I think if not majority, at least 40% of these accounts are with women, and around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sunam.
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari, aur jo daughters hain, unke education, unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare, jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai, agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the, aur financial year 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, और वॉज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They get to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो अब 11 करोड़

0: महिलाओं तक पहुंच चुके एलपीजी कनेक्शन। फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर विमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ। फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़, विमेन वर एक्सेस्ट। और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर।
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
0: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek yes. aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi hai. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। जी 98 बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
0: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है।
1: जी
0: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं।
1: जी जी
0: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी। फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%। सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से। सो ODF फ्री इंडिया। देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
0: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when yes. women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, yeah, due to the yeah. Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Yeah. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है। दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है।
1: एब्सोल्युटली आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इश्यू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए, मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए, सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो, पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे, आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे, उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
2: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था, आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या

0: जो हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ कार्ड्स, हर फील्ड में, या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
1: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज इजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है, और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कैन बी बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच विमेन नीड यूजुअली, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विथ दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time. And you see women are really very good at that, because this is heart and hand both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है, women led development कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो है ही, वो राजनीतिक सोच भी है, जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं, ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी, और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार है।
0: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 63% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई है एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
1: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज, आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न, एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे, और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा, और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
0: आदित्य जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है, और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास

0: होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
2: Thank you. In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat, abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक, इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.3 MHz पर। रात्रि के 11:45 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में कल सुबह 5:55 से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।